लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज

0: रक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Sevatirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global management. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. He said that a website is often the first gateway through which people interact with an institution and called for greater use of technology to make the delivery of consular and other services more seamless, responsive and citizen-centric. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थी वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब आपको सुनवा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। प्रस्तुत है लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं हमारा आज का समर्पण कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आप श्रोताओं आइए आपको बता दें आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी मृदुला भट्टाचार्य और सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का, जिसमें आप कुछ जानकारियों के अलावा सुनेंगे बॉलीवुड के सदाबहार गीत। सुबह 8 समय होगा समाचार प्रभात का और 8:15 पर आपको सुनवाएंगे मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर। 8:40 पर लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक होगा, जिसमें आज आप सुन सकेंगे कुरमाली लोकगीत संतोष महतो और उनके साथियों से। 9 आपको सुनवाएंगे हम कार्यक्रम विविधा। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रसरंजन और सुबह 10 प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे और हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मृदुला भट्टाचार्य।

हम आकाशवाणी के एक चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायबासा। श्रोताओं, आप सबों का यह पसंदीदा कार्यक्रम जोहार चायबासा को लेकर हम हाजिर हैं। सभी जोहार श्रोताओं को, जोहार चायबासा सुनने वाले श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, जहां सुबह की ताजगी है, मौसम की बात है और सुरक्षित सफ़र का संदेश है और साथ में है कुछ सदाबहार गीत। दोस्तों, सुबह का समय तो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता ही है क्योंकि खिड़की से आती ठंडी

श्रोताओं, कितनी खूबसूरत भावना है एक छोटी सी प्रार्थना, एक सच्ची उम्मीद और मन की गहराइयों से निकली पुकार। कभी हमारी अर्ज किसी अपने से होती है, कभी ईश्वर से और कभी खुद की जिंदगी से। बस इतना सा विश्वास रहता है कि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगी। और श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि हमें एक नई ताजगी प्रदान करेगी।

दोस्तों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म गाइड का ये गीत। और गीतों के सफ़र में अब बारी है हमारी आज के सुविचार की। हर नई सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम कल से बेहतर आज बने। दोस्तों, याद रखिए, बीता हुआ कल हमारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन आने वाला दिन हमारी कोशिशों से बनता है। इसलिए मुस्कुराइए, सकारात्मक सोचिए और आज को पूरे उत्साह के साथ जीना शुरू कीजिए। तो श्रोताओं, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ सुनते हैं हमारा ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार का गाया, गुलजार का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर फिल्म गोलमाल का यह गीत। और आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं जोहार चायबासा का कार्यक्रम। और अब दोस्तों जानते हैं मौसम के बारे में। बारिश का मौसम हो या बादलों से घिरी सुबह हो, मौसम में बदलाव इस समय हमारे रोज़मर्रा के जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रहा है। अगर आज आपको घर से निकलना है तो आप अपने मौसम की स्थिति पर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो सकती है और दृश्यता भी कम हो सकती है। दो पहिया वाहन वाले श्रोता विशेष सावधानी बरतें, हेलमेट जरूर पहनें, वाहन की गति मौसम और सड़क की स्थिति के अनुसार रखें। और इस मौसम की जानकारी के साथ श्रोताओं, हम सुनवाते हैं आपको अगला हमारा मधुर गीत।

आशा भोसले के मधुर स्वर में आप सुन रहे थे फिल्म लाजवंती का ये गीत। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। श्रोताओं, सुबह का समय, स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग और बाजार की ओर निकलते लोग और सड़कों पर बढ़ता यातायात, ऐसे में हमारी छोटी सी सावधानी किसी बड़े हादसे को रोक सकती है। तो इसलिए याद रखिए, सड़क पार करते समय निर्धारित स्थान या जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। दोपहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य पहने, कार में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का तो बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और बारिश में अचानक ब्रेक लगाने और तेज गति से वाहन चलाने से जरूर बचें। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता अवश्य दें। सड़क पर जल्दी पहुंचने से ज़्यादा जरूरी है सुरक्षित पहुंचाना और सुरक्षित पहुंचना। श्रोताओं, अगर

हमारे सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। इसलिए अपना नाश्ता ना छोड़ें, पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी पैदल चलने या हल्के व्यायाम के लिए जरूर समय निकालें। और सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: मजनू सुल्तानपुरी का लिखा ये बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में आर डी बर्मन के धुन पर फिल्म कशिश से।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से जोहार चायबासा का कार्यक्रम, जिसमें सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार गीत। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक वाहन चलाते हैं या काम के दौरान लगातार बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में आप कुछ देर जरूर उठ के टहला करें, क्योंकि सेहतमंद शरीर और सकारात्मक मन, यही हमारी खुशहाल जिंदगी की असली पूंजी है। और अब सुनवा रहे हैं हम आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। सचमुच संगीत में ऐसी ताकत होती है जो थके हुए मन को भी हल्का कर देती है। आप चाहे घर पर हो या रसोई में काम कर रहे हो या खेत की ओर जा रहे हो या दफ्तर के लिए निकल रहे हो, हमें उम्मीद है कि हमारी यह संगीत यात्रा आपकी सुबह को और भी सुहाना बना रही होगी। और चलते हैं अगले गीत की ओर। सुनवा रहे हैं आपको फिल्म सूरज का ये प्यारा गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में।

हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो।

श्रोताओं, अब आपको एक जरूरी बात फिर से याद दिला दें कि अगर आप स्वयं वाहन चला रहे हैं तो कृपया रेडियो सुनने में इतने मगन न हो जाएं कि आपका ध्यान सड़क से हट जाए। वाहन चलाते समय आपका पूरा ध्यान सड़क और अपने आसपास के यातायात पर होना चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट कोई औपचारिकता नहीं, दोस्तों आपके लिए सुरक्षा कवच है। और अपने बच्चों के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का तो आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। और अब श्रोताओं, हम सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और क्षमा करेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया, इंदिवर का लिखा, राजेश रोशन के धुन पर फिल्म जाग उठा इंसान का ये गीत। और हमारे गीतों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवा रहे हैं हमारा अगला गीत। दोस्तों, इस गीत को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश अभी होने वाली है,

इसलिए आप बारिश के मौसम में अपने घर से निकलने से पहले छाता या रेनकोट अपने साथ रखना ना भूलें। बिजली चमकने और तेज़ बारिश के दौरान खुले स्थान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बार फिर, सड़क पर पानी जमा हो तो अपनी स्पीड कम रखें, क्योंकि आप सामने आने वाले वाहन से दूरी बनाए रखें और अपने अनुमान के बजाय अपनी सावधानी को प्राथमिकता दें, क्योंकि जरूरी है मंजिल पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सुरक्षित सफ़र। और इसी सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं इस संगीत से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जावेद अख्तर के बोल एआर रहमान के धुन पर अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और साथियों को फिल्म लगान में। देखते ही देखते हमारी संगीत भरी सुबह अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। श्रोताओं, आज हमने गीतों के साथ मौसम की बात की और सुरक्षित यातायात का संदेश भी दिया और याद किया कि हर सुबह जीवन को एक नए ढंग से शुरू करने का अवसर देती है। और अब सुनते हैं चलते चलते ये गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में गाए फिल्म राजकुमार के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का सफर यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थायी समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।

0: 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और

0: आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उथरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही हैं। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीक भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से

0: utmost promptness. Amid the rising water level of Ganga, the West Bengal government has opened all the gates of Farakka Barrage. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: Rain activity in Odisha is likely to ease from today, though the impact of the active low-pressure system over the Bay of Bengal continues to be felt in several parts of the state. North coastal districts may receive moderate rainfall, while flood-affected areas remain under close watch as river levels respond to the recent spell of rain. We have more from a correspondent.
2: The low-pressure area over the Bay of Bengal remains active and is continuing to influence weather conditions over Odisha. Moderate rain is likely in several areas, with north coastal districts expected to receive rainfall. However, the IMD says rainfall activity will decrease from today, though rain is likely to continue till 30th of this month. A orange warning has been issued for 6 districts till this morning, while a yellow warning has been issued for 16 districts. In flood-affected Bhadrak and Jajpur, a large number of vulnerable schools are closed today as a precaution amid continuing rain and water logging. Meanwhile, the Baitarani at Akhwapada is still flowing above the danger mark, though the water level is showing a declining trend. Mahanadi is also rising due to opening of more gates in Hirakud Dam, while Jalaka River is also flowing above the danger level. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: Kerala is celebrating Uthiradam today, the penultimate day of the 10-day Onam festival, as the state prepares to welcome Thiru Onam tomorrow. We have more from a correspondent.
3: Uthiradam is not merely the eve of Thiruvonam, but also a day for completing final preparations and making last-minute purchases for the Onam festival. The traditional Uthiradam patchil has brought markets and shopping centers across the state to life. Homes are being decorated with colorful Ona pookalams, while preparations are underway for the traditional Ona sadhya to be served tomorrow. Special pujas are being held at temples, including the hill shrine of Shabarimala in Kerala. Smithy M. Palluriti, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: In men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal powered India to a hefty 503-9 declared in the first innings against host Sri Lanka on a rain-disrupted second day of the second and final test in Colombo yesterday. Earlier, Dhruv Jurel produced a flawless display of risk-free batting to score unbeaten 115. Devdutt Padikkal had provided the foundation with a commanding 117 yesterday. With the series already tilted 1-0 in India's favour, the visitors have strengthened their position with a commanding total. Today, Sri Lanka will resume the first innings at the overnight score of 8-2 in reply to India's 503-9. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
4: Thank you, Abhishek. On the National Sports Day, which falls on August 29th, the Pioneer states Prime Minister Modi to address country's youth ahead of National Sports Day. Jammu and Kashmir reopens probe into 1998 massacre of 23 Kashmiri pundits, writes the Indian Express. Ajit Dobhal lands in China, border dialogue with Wang Yi today, informs the Asian Age. Jaishankar meets Putin in Moscow, reports the Pioneer. UPI turns a decade old, sees 13,000-fold surge in transaction volume, reports the Hindu. And finally, Maradona's Hand of Gold ball of 1986 FIFA World Cup sells for $3.3 million, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And in some more news, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will undertake an official visit to Canada and the United States beginning today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots-level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। जनजातीय कला और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की हुई बैठक। वेटलैंड की पहचान, सत्यापन और डेटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। रिम्स एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में रिम्स को शामिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू। रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। नेता प्रतिपक्ष ने झामुमो पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में रुक रुक कर हो रही बारिश। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जनजातीय परंपरा हमारी सांस्कृतिक विविधता की महत्वपूर्ण धरोहर है। श्री गंगवार ने कहा कि जनजातीय कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़कर संरक्षण के साथ आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहल कारीगरों और महिला उद्यमियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ रही है और ऐसे उत्सव जनजातीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
5: जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ साथ परंपराओं के संरक्षण, संस्कृति विकसित करने का काम किया है। हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं है, इनके पीछे पीढ़ियों से चली आ रही कला, कौशल और अनुभव की कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इन परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक बाजार और नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया जाए।
0: जनजातीय गौरव उत्सव में देश भर से महिला उद्यमी हजारीबाग पहुंची और स्टॉल लगाया। महिला उद्यमियों ने कहा कि यह आयोजन बेहद सकारात्मक रहा। एक महिला उद्यमी ने कहा कि यहां व्यवसाय से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं।
6: अपना बनाते हैं सामान और इस तरह के स्टॉल मिलता है और वहाँ पे लगाते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे जिस तरह के स्टॉल हम लोग को मिले हैं, बाहर बाहर से भी महिला लोग आई हैं और अपने सामान को प्रदर्शित कर रही हैं और सेल भी अच्छा है और बहुत अच्छा लगा है कि माँ मई हमारे राज्यपाल जी हमारे अपने हाथों से मुझे मिला है सर्टिफिकेट।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की पहली बैठक हुई, जिसमें वेटलैंड संरक्षण, सीमांकन और वैज्ञानिक प्रबंधन को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वेटलैंड की पहचान, सत्यापन, डिमार्केशन, नोटिफिकेशन और डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि ये क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं। बैठक में बताया गया कि इसरो एटलस के आधार पर राज्य में 2119 संभावित वेटलैंड चिन्हित हैं, जिनका जिला स्तरीय समितियां भौतिक सत्यापन करेंगी और अतिक्रमण रोकथाम तथा मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
7: रिम्स रांची की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक विस्तार, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना और नए पाठ्यक्रमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में 250 एमबीबीएस सीटों के अनुरूप फैकल्टी और अन्य मानव संसाधन की उपलब्धता, इंटीग्रेटेड एमडी पीएचडी कार्यक्रम, ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के नए कार्यक्रम तथा एमएससी नर्सिंग शुरू करने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। वहीं राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रिम्स को एम्पैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में

0: अमल करने के लिए रिम्स प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत एक सप्ताह में औपचारिकताएं पूरी कर सेवाएं शुरू की जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में छात्र आंदोलन के दौरान पुतला छीनने, छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। छात्रा ने कहा कि वह डरी हुई थी, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में देर हुई।
1: मेरे तरफ से सवाल करना चाहती हूँ, मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही हूँ 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज में?
0: इस दौरान थाना परिसर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक अमर बाउरी, पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर छात्र आंदोलन को दबाने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
2: बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। पहले तो बच्चों को झांसा में डालकर जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाए, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे। उसको भी लाठी डंडे से और भी गुंडों के द्वारा, तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी।
0: पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय परिसर में JSLPS सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित राखी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस वर्ष जिले के लेस्लीगंज, पड़वा और नवा बाजार प्रखंडों में महिलाओं द्वारा 40,000 राखियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों से स्वदेशी राखियां खरीदने की अपील की। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश और अगले 5 दिनों तक राज्य भर में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत झारखंड की ओर से रांची में आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 27 अगस्त को प्रधानमंत्री के देशभर के युवाओं के लिए प्रस्तावित वर्चुअल संबोधन के साथ खेलो इंडिया संवाद, युवा सहभागिता और युवा कनेक्ट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार और जेपीएससी को नोटिस। हिंदुस्तान ने पाकुड़ में कई बांग्लादेशी नागरिकों के वोटर बनने की आशंका पर चुनाव आयोग द्वारा जांच के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रांची स्थित रिम्स में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने रांची के एक डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। जनजातीय कला और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की हुई बैठक। वेटलैंड की पहचान, सत्यापन और डेटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। रिम्स एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में रिम्स को शामिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू।

रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। नेता प्रतिपक्ष ने झामुमो पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप और राजधानी रांची समेत राज्यभर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं संतोष महतो और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें

संतोष महतो और साथियों के स्वर में गाए इस कुर्मालिक गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर और कृपानंद वारियार स्वामीगल की जयंती पर।

श्रोताओं, नेत्रदान पखवाड़ा पर हम आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो श्रोताओं, नेत्रदान की आवश्यकता और इसका महत्व और हमारे समाज में इसकी क्या भूमिका है, तो आइए इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। श्रोताओं, नेत्रदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के बाद भी रोशनी भर सकता है। हमारी आँखें हमारे लिए प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। दोस्तों, आँखों के माध्यम से ही हम अपने आसपास के इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। अपने परिवार के चेहरे, प्रकृति के रंग, सूर्योदय की लालिमा, बच्चों की मुस्कान और अपने प्रियजनों के भाव। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिंदगी की जिसके सामने यह सुंदर दुनिया होते हुए भी अंधकार छाया हो। ऐसे ही लोगों के जीवन में नेत्रदान उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है। दोस्तों, हमारे समाज में आज ऐसे अनेक लोग हैं जो आँख के कॉर्निया में खराबी के कारण अपनी दृष्टि खो चुके हैं। कई बार बीमारी, चोट या अन्य कारणों से भी कॉर्निया

नहीं ले जा सकते, लेकिन यदि हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में उजाला ला सकती है। श्रोताओं, नेत्रदान का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह किसी व्यक्ति को दृष्टि का उपहार देने में सहायक है। एक नेत्रदाता के कॉर्निया से जरूरतमंद व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है, जीवन में आँखों से दुनिया देखिए और जीवन के बाद अपनी आँखों से किसी और को दुनिया देखने का अवसर दीजिए। नेत्रदान का महत्व केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसे दृष्टि मिलती है, उसका प्रभाव उसके पर पूरे परिवार पर भी पड़ता है। दृष्टि वापस आने के बाद व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, काम कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है और अपनी समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इस तरह नेत्रदान किसी एक व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके परिवार और उसके समाज के भविष्य को भी बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। नेत्रदान में हमारे समाज की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, सबसे पहली भूमिका है कि हम जागरूकता फैलाएं। आज भी नेत्रदान को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान कर देने से मृत व्यक्ति के चेहरे का स्वरूप बिगड़ जाएगा। कुछ लोग धार्मिक या सामाजिक मान्यताओं के कारण संकोच भी करते हैं, जबकि नेत्रदान की प्रक्रिया प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा ही की जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अफवाहों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक जानकारी और चिकित्सकीय सलाह पर ही भरोसा करें। और दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, परिवार की सहमति और उनका सहयोग का होना। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में नेत्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है तो परिवार के सदस्यों को भी इस इच्छा की जानकारी होनी चाहिए। मृत्यु के बाद समय पर संबंधित आई बैंक या अधिकृत संस्था को सूचना देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज ही अपने परिवार में इस विषय पर बातचीत कीजिए। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों से कहिए कि यदि आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा से लोग परिचित रहें। श्रोताओं, किसी भी सामाजिक अभियान की सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि उनसे जुड़े हुए भ्रम को दूर किया जाए। नेत्रदान को लेकर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हमें नेत्रदान और आँखों की बिक्री बिल्कुल अलग बात है। नेत्रदान मानव सेवा के उद्देश्य से किया जाता है और इसकी प्रक्रिया अधिकृत संस्थाओं और चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से होती है। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति का नेत्रदान हर परिस्थिति में संभव हो यह आवश्यक नहीं है। दान के बाद चिकित्सकीय विशेषज्ञ ही यह तय करते हैं कि उत्तक प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसलिए किसी भी शंका की स्थिति में अपने नजदीकी आई बैंक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने में हमारे युवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी यदि नेत्रदान से संबंधित सही और वैज्ञानिक जानकारी अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिताएं, परिचर्चाएं और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्यों न हम अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या किसी विशेष अवसर पर नेत्रदान का संकल्प लेकर उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकल्प बनाने की कोशिश करें। श्रोताओं, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है तो उसके साथ उसकी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा नहीं जाती बल्कि उसके द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य लंबे समय तक लोगों के दिलों में जीवित रह सकता है। नेत्रदान ऐसा ही एक महान कार्य है।

हमारे जाने के बाद किसी व्यक्ति को इस दुनिया को देखने का अवसर मिलता है, किसी माँ को अपने बच्चे का चेहरा देखने की खुशी मिलती है, किसी बच्चे को किताब पढ़ने का अवसर मिलता है, या किसी युवा को अपने सपनों की दुनिया देखने की उम्मीद मिलती है, तो इससे बड़ी मानव सेवा और क्या हो सकती है दोस्तों। इसलिए नेत्रदान को केवल एक अभियान न माने, बल्कि इसे मानवता और संवेदनशीलता की संस्कृति बनाएं। अपने परिवार से बात करें, सही जानकारी प्राप्त करें, अधिकृत संस्था के माध्यम से नेत्रदान का संकल्प लें और अपनी इच्छा अपने परिजनों को जरूर बताएं। तो श्रोताओं, अंत में इतना कहना चाहूंगी, आंखें बंद हो तो भी किसी की दुनिया रोशन की जा सकती है। जीवन समाप्त हो जाए लेकिन मानवता का प्रकाश समाप्त ना हो। नेत्रदान का संकल्प लें और किसी के जीवन की को उजाला से भर दें। तो श्रोताओं, हम आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर इस विषय पर बात कर रहे थे और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और इस संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा। और अब श्रोताओं आज के विविधा कार्यक्रम में हम बात करते हैं संत विद्वान और महान प्रवचनकार किरूपानंद वारियार स्वामीगल की, जिनकी आज जयंती है। हम आज स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे महान संत विद्वान आध्यात्मिक चिंतक और प्रभावशाली प्रवचनकार को जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में भक्ति ज्ञान और सदाचार का प्रकाश फैलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किरूपानंद वारियार स्वामीगल की। किरूपानंद वारियार स्वामीगल का जन्म 25 अगस्त यानी आज के ही दिन 1906 को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कंगन नल्लूर में हुआ था। तमिल भाषा साहित्य और आध्यात्मिक परंपरा से उनका गहरा जुड़ाव बचपन में ही रहा। आगे चलकर उन्होंने अपने ज्ञान और प्रभावशाली वक्तित्व के माध्यम से तमिल समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। श्रोताओं, किसी भी महान व्यक्तित्व की पहचान केवल उसके इस बात से नहीं होती कि उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि इस बात से होती है कि उस ज्ञान को उसने समाज में किस हद तक पहुंचाया है। किरूपानंद वारियार स्वामीगल इसी दृष्टिकोण से विशेष थे। वे भगवान मुरुगन के अनन्य भक्त थे और तमिल भक्ति साहित्य के गहरे ज्ञाता भी थे। तिरुपुगल, तिरुकुरल और शैव साहित्य जैसे ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि कठिन आध्यात्मिक और साहित्यिक विषयों को सामान्य लोगों के लिए सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करना। उनके प्रवचन न केवल धार्मिक कथाओं का वर्णन होते थे, उन्होंने अपने जीवन जीने की कला को भी सिखाया। वे लोगों को बताते थे कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना ही नहीं है, सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हम अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम जरूरतमंद व्यक्ति की कितनी सहायता कर पाते हैं और अपने जीवन में सत्य तथा अनुशासन को कितना महत्व देते हैं। यही कारण था कि उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते थे। उनकी वाणी में सरलता थी, लेकिन विचारों में गहराई। वे धार्मिक कथाओं के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाते थे। उनकी शैली ऐसी थी कि श्रोता केवल सुनते नहीं थे, बल्कि स्वयं को उन कथाओं से जोड़ लेते थे। किरूपानंद वारियार स्वामीगल का तमिल भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम और सम्मान जगाया। आज जब हमारी नई पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया का सपना देख रही है, तब उनके विचार हमारे लिए और भी प्रासंगिक दिखाई देने लगते हैं। आज हमारे पास ज्ञान के अनेक साधन हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया की कोई भी जानकारी कुछ ही सेकंड में हमारे सामने आ जाती है, लेकिन जानकारी और ज्ञान, इन दोनों में बहुत ही अंतर है दोस्तों। जानकारी हमें बताती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जबकि ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या करनी चाहिए। किरूपानंद वारियार स्वामीगल का जीवन इसी ज्ञान को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा प्रदान करता है। उनका संदेश था कि मनुष्य के जीवन में भक्ति के साथ विवेक, ज्ञान के साथ विनम्रता और सफलता के साथ सेवा की भी भावना होनी चाहिए। तो श्रोताओं, आज हम सफलता को धन पद और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे संतों की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि मनुष्य की वास्तविक महानता उसके चरित्र में होती है। यदि हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं,
तो वह ज्ञान अधूरा है। यदि हमारे पास धन है लेकिन दूसरों के लिए

करुणा नहीं तो वह समृद्धि हमारे लिए अधूरी है। और यदि हमारे पास धार्मिक आस्था है लेकिन हमारे व्यवहार में प्रेम और मानवता नहीं तो हमारी भक्ति भी अधूरी है। किरूपानंद वारियार स्वामीगाल के जीवन में हमें यही संतुलन देखने को मिलता है। उनकी जयंती केवल किसी महान व्यक्ति को याद करने का अवसर नहीं है, यह अपने जीवन को भीतर से देखने का अवसर भी है। हम खुद पूछ सकते हैं, क्या हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल पढ़ाई और प्रतियोगिता की ओर ले जा रहे हैं या उन्हें अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं? क्या हम अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं? क्या हम जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए आगे जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे ज्ञान और हमारी शिक्षा से हमारे समाज को कोई लाभ पहुंच रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ही किसी महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती है। श्रोताओं, किरूपानंद वारियार स्वामीगल ने अपना जीवन धर्म, साहित्य, ज्ञान और जन जागरण के लिए समर्पित किया। उनका व्यक्तित्व हमें बताता है कि एक अच्छा वक्ता केवल शब्दों से प्रभावित नहीं करता, बल्कि अपने विचारों, अपने आचरण से लोगों के बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो आज उनके जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन से तीन महत्वपूर्ण संदेश श्रोताओं ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहला, ज्ञान अर्जित करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किताबें पढ़ें, अपने साहित्य और अपनी संस्कृति का ज्ञान रखें और रोज नई चीजें सीखें। दूसरा है, अपने ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारें। केवल अच्छी बातें सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे अपने जीवन में अपनाना भी बहुत ही जरूरी है। तीसरा, मानव जीवन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, बुजुर्गों का सम्मान करना और समाज के लिए उपयोगी कार्य करना ही सेवा है। तो श्रोताओं, किरूपानंद वारियार स्वामीगल की वाणी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनना है। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। और सुनते हैं ये भजन।

इस भजन के साथ ही श्रोताओं, आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और बालवीर का गाया फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत। और अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फिल्म का नाम था अंधा कानून। आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में आपने सुना ये गीत।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन, और अब प्रस्तुत है अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल दीवाना। आप आनंद ले रहे हैं हमारे कार्यक्रम रस रंजन का।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: इस जरूरी संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं फिल्म सिमरन से, मोहित चौहान की आवाज में।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाए फिल्म जैकपॉट के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयाँ रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई ना कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
3: विमलेश जी लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
3: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके

0: योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी,
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
1: जी,
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे तो पशु पक्षी
3: पर क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
4: अरे हो गई है
5: क्या, हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
6: सारी फसल बह गई।
7: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से

0: गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, तो और काट, 10 से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
6: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
8: अरे हमारे पशु पक्षी को क्या होगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
9: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
9: सारी फसल बह गई।
8: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
9: सारा
8: सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
9: चलो जल्दी ऊपर।
8: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
9: चलो चलो,
8: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
9: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
10: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
11: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
12: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगीं और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो, अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: जी ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
4: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
1: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई।

0: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी। शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
1: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
0: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT, आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। और इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: में हाजिर हैं नरेश्वर। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी बिल्कुल हमारी तरह होंगे, थोड़े गर्मी से त्रस्त और बाकी बारिश में मस्त, है ना?
1: बिल्कुल मिता, शुरू में बारिश के मिजाज ने तो हमें जैसे कि डरा ही दिया था। कम बारिश की संभावना से हमारे किसान थे वो भी चिंतित थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रचना बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाके के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से झारखंड में एक बार फिर मानसून पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे और अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, लेकिन 27 अगस्त के बाद
1: लेकिन 24 से 27 अगस्त के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश गर्जन के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान 27 अगस्त को रांची में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त से 30 अगस्त तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राज्य के दक्षिणी भाग सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और इनसे सटे मध्य भाग गुमला और खूंटी में भारी बारिश होगी।
1: और 26 अगस्त को भी यानी कि तेज हवा वज्रपात होगी
0: कल
1: और दक्षिणी सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भी भारी बारिश होने की जो है वो संभावना है। और इसके बाद 27 को रांची, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और इससे सटे उत्तरी पश्चिमी लातेहार, चतरा, उत्तर पूर्वी गिरिडीह में भी भारी बारिश होगी।
0: आज भी रचना दक्षिणी पश्चिमी जैसे गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम और निकटवर्ती जो खूंटी है उसमें भारी बारिश की संभावना है और दूसरे जिलों में भी तेज हवा और मध्यम दर्जे की बारिश होगी और उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य जिलों में भारी वर्षा का अनुमान वो कल है। कई क्षेत्रों में गर्जन और के साथ वज्रपात भी हो सकता हो और येलो अलर्ट जारी किया गया। और जैसा कि तुमने बताया अभी रचना, रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद सहित चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ ही 28 और 29 अगस्त को भी राज्य के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रहेगी। 30 अगस्त के बाद थोड़ी राहत की संभावना है रचना।
1: ये तो थी हमारी रांची की बात, वर्षा के बारे में बोल रहे थे हम, लेकिन इसके साथ साथ ही यूपी समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई थी कल और जल भराव होने के कारण
0: बाढ़ भी जैसी स्थिति हो गई थी और जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा ही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम बारिश हुई है जबकि कई जगहों पर भारी बारिश हुई है जिससे शहरी इलाके में जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार में भी भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इस वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और कई छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं रचना
1: जा रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, कोलकाता और हावड़ा में भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में भी भारी बारिश की संभावना है, यानी कि माने तो
0: पूरे भारत में तमिलनाडु में भी जल भराव से लोग परेशान है। चेन्नई और आसपास के तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया रचना और सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ है। चेन्नई में सोमवार सुबह तक कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है, यानी कि हम सभी भारतवासियों को इस बारिश का आनंद तो लेना है, उठाना है, लेकिन थोड़ी सावधानी से रहनी है, रास्तों का ख्याल रखना है आपको। और बारिश जब हो रही है तो फिलहाल हम ये तो गुनगुना ही सकते हैं रचना, है ना?

0: थम के बरस, जरा जम के बरस। वाह वाह, क्या ख्वाहिश है रचना।
1: बिल्कुल मिता, बारिश है तो हमने थम थम के बरसने को बोल दिया है, मगर आज थम थम के बरस मतलब कौन चाहता है, थमना कौन चाहता है,
0: थमना नहीं चाहता है। बिल्कुल रचना, आजकल की भाग दौड़ भरी और तकनीकी दुनिया में हम पहले से कहीं अधिक शिक्षित और संपन्न तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम पहले से अधिक संवेदनशील भी हुए हैं, ये भी एक शोचनीय बात है रचना।
1: और आज अक्सर देखने में आता है कि लोगों में दूसरों की मदद करने का गुण कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने हमें हजारों लोगों से जोड़ तो दिया है, लेकिन कई बार हमें अपने पड़ोसी तक का हाल पता नहीं होता है।
0: बिल्कुल, हमारे बच्चों के पास सुख सुविधा के आधुनिक साधन तो हैं रचना, लेकिन क्या उनके पास दूसरों के दुख को महसूस करने का समय है? वर्तमान दौर में हमें इन प्रश्नों पर गहनता से विचार करना होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, आधुनिक दुनिया में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और निस्वार्थ भाव बनाए रखना ही मानव होने की असली पहचान है। सफल और अच्छे इंसान के बीच मानवता ही वे गुण है जो आपको औरों से अलग बनाता है। यही संस्कार हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी सच्ची विरासत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज के युवा संवेदनहीन नहीं है रचना, उन्हें केवल सही अवसर और सही दिशा की आवश्यकता है। जब कोई स्वयंसेवक सामूहिक सहयोग से किसी गांव में स्वच्छता अभियान चलाता है, रक्तदान करता है, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में सहयोग करता है या किसी आपदा के समय राहत कार्य में जुटता है, तब उसके भीतर केवल सेवा का भाव नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध भी होता है रचना।
1: बिल्कुल, सेवा की यही प्रक्रिया स्वयंसेवक को भीतर से भी बदलती है। जब युवा किसी अनजान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर का नागरिक भी अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनता है, और अभिभावकों को भी बस यही प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल रचना, हम बच्चों को अच्छे संस्कारों पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे कहने से नहीं सीखते, वे हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि घर में बुजुर्गों का सम्मान होगा, काम करने वाले सहायकों के साथ गरिमा का व्यवहार होगा, तो अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। किसी की बात पूरी संवेदनशीलता से सुनना, प्रकृति और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करना, मतभेद होने पर भी संवाद बनाए रखना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना परिवार की सामान्य आदत होगी, तो बच्चों को अलग से मानवता का पाठ नहीं पढ़ाना होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, वे उसे खुद ही जीना सीख जाएंगे। सच्ची मानववादी सोच केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ समस्त जीवों, प्रकृति, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण पृथ्वी के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना है, और ये बच्चा आपके मानवतावादी आचरण को देखकर ही सीखेगा।
0: बिल्कुल, फिर हम अपने बच्चों को ये तो कह ही सकते हैं रचना,

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और रचना, अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। 25 अगस्त की तारीख इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म और निधन का गवाह रहा है।
3: इस दिन गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस को आजाद कराया गया था।
2: 25 अगस्त को मुख्य रूप से उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 25 अगस्त 1825 को उरुग्वे ने ब्राजील के साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अमेरिका में राष्ट्रीय उद्यान सेवा संस्थापक दिवस भी मनाया जाता है और इसके अलावा इस दिन कुछ देशों में किस एंड मेकअप डे जैसे अनूठे दिवस भी मनाते हैं। रचना,
3: और 25 अगस्त 1944 को मित्र राष्ट्रों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस को नाजी कब्जे से मुक्त कराया था।
2: 25 अगस्त 1991 को महान फार्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर ने अपना पहला F1 रेस डेब्यू किया था।
3: और 25 अगस्त 1916 को टोटनबर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया था।
2: 25 अगस्त 2012 में नासा का वायजर 1 अंतरिक्ष यान इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान बना।
3: और 25 अगस्त 1940 को लिथुआनिया, लतनविया और एस्टोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए।
2: 25 अगस्त 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता।
3: 1963 में आज के दिन सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के सोशल विरोधियों को फांसी चढ़ा दिया गया था।
2: 25 अगस्त 1977 में माउंट एवरेस्ट विजेता सर एडमंड हिलेरी ने अपने प्रसिद्ध ओशियन टू स्काई अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से की थी। उनका उद्देश्य जेट नौकाओं के द्वारा गंगा नदी के विपरीत प्रवाह में यात्रा करते हुए समुद्र से बद्रीनाथ तक पहुंचना था।
3: और 25 अगस्त 1980 में जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था।
2: 25 अगस्त 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना।
3: और 1997 में मासूमा इब्तिकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई।
2: 25 अगस्त 2001 में लंदन में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने।
3: अर्मिता, हम जरा अहम हस्तियों के बारे में भी अपने श्रोताओं को बता दें जिनका जन्म आज के दिन यानी 25 अगस्त को हुआ था।
2: हाँ बिल्कुल रचना, अगर फिल्म जगत की बात करें तो 25 अगस्त डेजी शाह, राजीव कपूर और विजेता पंडित का जन्म दिवस है। अगर हम बात करें राजीव कपूर की, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, उनका जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। वे महान शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे।
3: उन्हें मुख्य रूप से फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए जाना जाता है,
2: जो 1985 में रिलीज भी आई थी। हाँ।
3: और 9 फरवरी 2021 को उनका
2: निधन हो गया। उनका जो प्यारा सा नाम था रचना, घर वाले जो उन्हें या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चिंपू के नाम से पुकारते थे। उनके पिता राज कपूर थे जैसा कि पहले हमने बताया, और माता कृष्णा कपूर थी। राजीव कपूर के दो भाई रणधीर कपूर और ऋषि कपूर उनके बड़े भाई थे।
3: ऋतु नंदा और रीमा जैन उनकी बहनें थी। और वैसे भी कपूर खानदान जो है वो तो पहले से ही फिल्मों में छाया हुआ है। उनकी सारे लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
2: बिल्कुल,
3: उनके दादाजी भी पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं।
2: काफी मशहूर थे वो, संस्थापक कह सकते हैं। वो तो मतलब एक आइकन थे वो, ये लो इन लोगों के लिए तो कहना ही नहीं है रचना। और अगर हम चिंपू की बात करें यानी राजीव कपूर की बात करें, तो उन्होंने अपना डेब्यू किया था 1983 में फिल्म एक जान है हम से, अभिनय की उनकी शुरुआत हुई थी। और जैसा कि रचना ने पहले बताया हमारे श्रोताओं को कि राम तेरी गंगा मैली की कैरियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। एक लवर बॉय की उनकी

0: इमेज बन गई थी और बतौर अभिनेता बहुत ज्यादा उनके मन मुताबिक जब सफलता नहीं मिली रचना, तो उन्होंने
1: उन्होंने
0: निर्देशन में
1: और निर्माण में भी हाथ अपना आजमाया।
0: आजमाया।
1: उन्होंने हिना और आप लौट चले फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और उन्होंने साल 1996 में माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर स्टारर फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्देशन भी किया।
0: तो क्यों ना रचना हम उनकी हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं।

0: तो बहुत सही है कि प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी ही कट जाती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल, अगर जिंदगी में प्यार हो तो फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता रचना। और हम अपने श्रोताओं से भी बातें अपनी जारी रखेंगे, भी ढेर सारे बातें करनी है उनसे, लेकिन हम अभी हाजिर होते हैं श्रोताओं बस थोड़े से विराम के बाद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: रचना, हम इतिहास की बातें कर रहे थे और इतिहास में भी हम बातें कर रहे थे उन व्यक्तियों की जिनका जन्म हुआ था.
2: तो 25 अगस्त 1888 को खाकसार आंदोलन के जनक इनायतुल्ला खाक मशरिकी का जन्म हुआ था.
1: 25 अगस्त 1994 को प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान

0: के लिए जाना जाता है।
1: उनका जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक शास्त्रीय गायक थे और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे, और उनकी जो बहन सुलक्षणा पंडित वो भी एक अभिनेत्री और गायिका थी, और उनके भाई
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जतिन नल्ले
0: अभी जो धूम मचा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में,
1: जाने पहचाने संगीत
0: प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। और विजेता पंडित ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म लव स्टोरी से की थी, और उनके साथ कलाकार थे अभिनेता कुमार गौरव, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार जी के सुपुत्र हैं,
1: और उन्होंने नहीं उनको इस फिल्म में लिया था, और दोनों को मिलकर वो फिल्म उन्होंने बनाई थी अपने बेटे के लिए, खास तौर पर
0: ये फिल्म बनाई थी, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट भी रही थी रचना। और इसके बाद उन्होंने
1: गीत के तो क्या ही कहने,
0: अरे मत पूछिए,
1: मतलब एक से बढ़कर
0: सुपर डुपर हिट थी, और उस समय के युवाओं की तो बस फिल्म भी दिल की जान थी, और होठों पर गीत जो उनके हटते ही नहीं थे। और इसके बाद उन्होंने जीते हैं शान से जलजला, मोहब्बत और मिसाल जैसी कुछ अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन लव स्टोरी ज्यादा हिट फिल्म थी।
1: और उन्होंने भी कई फिल्मों में गीत भी गाए हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वो अच्छी सिंगर भी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अरे यारो
1: जीते हैं शान से,
0: हाँ, अरे यारो मेरे प्यारो फिल्म जो जीता यही सिकंदर फिल्म का गीत है, और देखने में सीधा साधा जो है वो भी गीत उन्होंने गाया है
1: लव स्टोरी का फिल्म,
0: और तेरी मेहरबानियां फिल्म का एक बहुत मशहूर गीत है दिल बेकरार है, सोनू निगम के साथ उन्होंने ये गाया था,
1: और याद तेरी आती है उनका एक चर्चित एकल गीत है, और मतलब ऐसे कई फिल्मों में उन्होंने गीत भी गाए हैं, लेकिन अगर हम उनके सफल फिल्मों की बात करें तो वो फिल्म आती है उनकी लव स्टोरी, और उसके गीत आते हैं, तो क्यों ना उस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुना जाए।
0: बिल्कुल।

0: रचना, अच्छा स्वास्थ्य भी हम सभी का सपना होता है, लेकिन कई बार हम खुद ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं।
1: मीता, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, तो हमारी स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतों की तरफ तो नहीं है मतलब आपका इशारा?
0: बिल्कुल बिल्कुल रचना, मेरा इशारा उसी तरफ है। अक्सर हम घबराहट, मानसिक तनाव या एंजाइटी महसूस होने पर इसके पीछे दबाव या नींद की कमी को वजह मानने लगते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण आपका कम पानी पीना भी हो सकता है।
1: क्लोज जर्नल कैलिफोर्निया के एक स्टडी के मुताबिक शरीर में पानी की कमी का सीधा असर हमारे दिमाग, मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही फायदे मिल सकते हैं।
0: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन का और जो होता है मूड पर भी असर होता है, नींद पर भी असर होता है। डिहाइड्रेशन का असर एंजाइटी के साथ मूड और नींद पर पड़ता है, जैसा कि हम अभी बोल रहे हैं रचना। कम पानी जो है उसका संबंध थकान, कंफ्यूजन और कम नींद से पाया गया है, और खराब नींद भी आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकती है।
1: आजकल ये एंजाइटी काफी लोगों में पाई भी जाती
0: है। बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है लोगों में, और फिर गलत दिनचर्या जो है, कम सोना, वो एंजाइटी को बढ़ाता है, और हड़बड़ाहट, तनाव, काम अपना समय पर नहीं कर पाने से भी आपकी एंजाइटी बढ़ती है।
1: एक्चुअली हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं है ना, हम समय से सोते नहीं है और समय से जागते नहीं है, तो वो जो है हमारे शरीर को गलत प्रभाव,
0: फिक्स समय पर कामों को भी निपटाते नहीं है ना। पहले बुजुर्ग हमारे कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, भोरी करेगा कब, मगर ये बात हम समझते नहीं है। उन्होंने ये बहुत सोच समझ कर कहा था रचना, और उसकी वजह से एंजाइटी नहीं होती थी, क्योंकि हम समय से अपना कल का काम अगर हम आज निपटा लें तो जाहिर सी बात है कि कल हम बेफिक्र रहेंगे।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है ना कि जब हम कोई काम को लेते हैं तो उसके लिए पहले पूरी प्लानिंग करते हैं,
0: तो
1: उसके अनुसार अपने काम को करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से उठिएगा नहीं तो आप के पास समय तो है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे?
0: तो भागते दौड़ते, जब आप भागिएगा दौड़िएगा तो जाहिर सी बात है
1: स्ट्रेस तो होगा ही,
0: एंग्जाइटी तो होगी ही, और हड़बड़ाहट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं रचना, जो हम अपने श्रोताओं से अभी कहना नहीं चाहते क्योंकि मूड अच्छा है, और जैसे कि दुर्घटनाएं भी होती है ना। अगर आप हड़बड़ाहट में है, भागते दौड़ते जा रहे, पता चला कि अगर आप पैदल भी है तो पता चला किसी से टकराते बच गए, और अगर आप व्हीकल पर है तब तो भैया आप अपने साथ साथ सामने वाले के लिए भी खतरा बन जाते हैं।
1: क्योंकि ऐसा इसीलिए नहीं है कि क्योंकि आप जा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका ध्यान नहीं है उस पर। और लेकिन हम बात कर रहे थे पानी पीने की, तो पानी देखिए इसी हड़बड़ाहट में हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं ना।
0: अगर लक्षण ये सब दिखे तो आप सतर्क हो जाएं, जैसे कि मुंह का सूखना, यूरिन का रंग गहरा पीला, कब्ज, सिरदर्द, उल्टी, थकान, सुस्ती, ड्राई स्किन, दिल की धड़कन का तेज होना, पानी की कमी होने के संकेत हो सकते हैं।
1: और वहीं बच्चों में चिड़चिड़ापन, सुस्ती और रोते समय आंसू ना आना गंभीर
0: मतलब बताइए, आंसू ना आना भी डिहाइड्रेशन के संकेत है, तो ये सतर्क हो जाइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप कुछ उपाय करके अपने पानी पीने के तरीके को सुधार सकते हैं, पानी पीने की आदत को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पानी की बोतल को आप हमेशा अपने साथ रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल ले लें, ताकि जब आपको याद आए तो आप पानी फटाक से पी लें।
1: और इसके लिए जरूरी भी है कि मोबाइल में आप अलार्म लगा लें हाइड्रेशन ऐप का, जिससे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की वो याद दिलाता रहे कि एक अलार्म देता रहे।
0: तकनीक का इस्तेमाल भाई इसमें भी करिए,
1: सबके हाथ में होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप फोन रखते हैं, आप इतना रील देखते हैं, आप फेसबुक इंस्टा चलाते हैं, तो थोड़ा सा अलार्म भी बजा लीजिए अपने लिए,
1: ताकि वो आपको याद दिलाए पानी पीना है।
0: पानी वाले जो फल और सब्जियां हैं उन्हें खाएं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, जो पानी से भरपूर फल हैं, उनको खाने से आपके शरीर में कुल फ्लूड इंटेक में योगदान होता है।
1: और सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिए। हाँ, दिन में अपनी जरूरत के अनुसार आप ज्यादा पानी पी सकते हैं, लेकिन सोने से पहले ज्यादा पानी ना पिए।
0: अगर इन सब आदतों का ख्याल रखेंगे तो फिर खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में होंगी, है ना?
1: बिल्कुल।

0: मीता गीत तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन खुशियां 2 मिनट में काफूर हो सकती हैं अगर हमारे आसपास का वातावरण और पर्यावरण सही ना हो तो।
1: बिल्कुल रचना, पर्यावरण संबंधी ऐसी ही कोई ना कोई चिंता हमारे सामने आए दिन खड़ी होती जाती है। ऐसे ही एक बड़ा संकट इन दिनों नजर आ रहा है, एशिया के वाटर टावर से हर साल कम हो रहा है 2420 करोड़ टन भूजल।
0: एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से महाद्वीप की कई बड़ी नदियों को पानी मिलता है। नए उपग्रह आधारित इस अध्ययन के अनुसार क्षेत्र में हर साल 2420 करोड़ टन भूजल कम हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने के साथ ही जल दोहन से भूजल भी कम हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये भारत समेत 11 देशों में फैला है ये वाटर टावर। हाई माउंटेन एशिया में हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम, पामीर, कुनलुन, तियान शान और तिब्बती पठार जैसे क्षेत्र आते हैं। इसकी व्यापक सीमा में चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और म्यांमार के हिस्से शामिल हैं।
0: और 2003 से 20 के बीच ऊंचे पर्वतीय एशिया के करीब 2/3 हिस्से में भूजल भंडारण कम हुआ है। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट घनी आबादी और ज्यादा सिंचाई वाले इलाकों में दर्ज की गई है।
1: और रचना, तकनीक और विज्ञान की बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खुशखबरी जैसी है, टेक्सटाइल ब्रेल।
0: अच्छा, इसे टेक्सटाइल ब्रेल लिपि कहा जाता
1: है। हाँ, नक्शे विज्ञान के क्षेत्र अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर के दृष्टिबाधित बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि छूकर समझ रहे हैं। कोयम्बटूर के प्रभु की पहल टेक्सटाइल ब्रेल इंडिया ने तमिलनाडु के 10 जिलों के 10 सरकारी स्कूलों के 354 बच्चों छात्रों तक विशेष अध्ययन सामग्री पहुंचाई है।
0: और प्रभु ने देखा कि दृष्टि बाधित बच्चे शब्द पढ़ लेते हैं पर नक्शे आकृतियां समझना मुश्किल होता है, तो यही बात उन्हें टेक्सटाइल शिक्षा की ओर ले गई और उन्होंने 2011 में काम शुरू किया। 2023 में टेक्सटाइल ब्रेल इंडिया की शुरुआत की। शुरू में ये महंगी सामग्री बड़ी चुनौती थी। उन्होंने विशेष कागज मंगवाकर प्रिंटिंग खुद संभाली और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से ये सामग्री स्कूलों तक पहुंची और इससे बच्चे जो है विषयों को बेहतर तरीके से सीख भी रहे हैं।
1: तो जिनकी आंखें नहीं है उन्हें भी दुनिया देखने का हक है और हम बहुत तरह से उनके मदद कर सकते हैं। उनकी आंखों के दीप को हम भी जला सकते हैं।

0: देखते देखते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। घड़ी की सुइयां बिल्कुल इशारा कर रही हैं कि अब हम अपने श्रोताओं से विदा लें। तो हम अपने श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं इस पावन सावन महीने की। अब अंतिम सोमवारी कल थी, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो कांवर लेकर के जल चढ़ाने के लिए गए हुए होंगे। भोलेनाथ का ये प्रिय महीना है और हम उन्हें नमन करते हैं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
1: आप
0: स्वस्थ रहें और मस्त रहें और इसी तरह हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। और अब मीता और रचना
1: को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:30 हो चुके हैं। ये समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम।

कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। हमें पता है कि हमारे सभी श्रोता इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि उनके खास जो शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में, और इसीलिए काफी जतन से वो हमें पत्र लिखते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके पत्रों को सलीके से लें, शामिल करें, उनकी फरमाइशों को पूरा करें। तो पहली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं उन श्रोताओं के नाम है, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केसरी, घनानंद केसरी और विनोद केसरी, सरगुजा मैनापाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन कुमारी वली, कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिलन का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए अब सुनते हैं साजन का घर फिल्म का ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वरों में। बोल है समीर के, संगीत नदीम श्रवण का, पसंद हमारे इन श्रोताओं की। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी से, भागवत वर्मा गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंदार्य, अभय नंदार्य, परमानंदार्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित तथा महादेव केसरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिखा है इस पत्र को हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मिका बिरक ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का फिल्म साजन के घर का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद जारी है। आपके ढेर सारे पत्र इस समय हमारे हाथों में हैं और आपके पसंदीदा गीत भी आपके इंतजार में है, लेकिन हम मिलते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से हम उठा रहे हैं उन पत्रों को जिन्हें लिखा है हमारे प्यारे श्रोताओं ने काफी मेहनत से और प्यार से. ये पत्र है मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गहवानकर, राही सरिता गहवानकर, सिद्धांत गहवानकर, प्रिंस एकांश गहवानकर और विश्वकर्मा नगर नागपुर शैलेश से शैलेश गहवानकर, वैशाली गहवानकर, श्वेता सुमित गहवानकर, कुमारी ध्वनि गहवानकर परी का. अगला पत्र हम उठा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं का है. ये आप रहते हैं कोटवा नारायणपुर बलिया में. लिखा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने. दुबिहा नेवादा से ये पत्र आया है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का. शेरपुर कला गाजीपुर से ये पत्र आया है अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का. आप सभी सुनना चाहते हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में. आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, बड़ा बॉम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देवेंद्र जी, चक्रधर गेलिया लोहर से, कोमल बेसरा, बसंती बनमाली, सिद्ध कुमारी, पूजा अनु और उनके दोस्त, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश ताबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज की गृह लक्ष्मी आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हैं लता रानी और रानी शुक्ला। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: पहलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारी सखियों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। उम्मीद है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी और प्रसन्न भी। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी सखी लता
1: और मैं रानी। गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। बहनों, कहते हैं ना, दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्रकृति के रंग, अपनों के चेहरे और जिंदगी के अनगिनत खूबसूरत पल, लेकिन इन सब को देखने का जो सुख है वो आंखों के बिना अधूरा है, है ना लता?
0: सच कह रही हो रानी, आंखों की बदौलत ही तो हम सब खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। और सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आसमान के चमकते तारों तक हमारी आंखें हमें जीवन के न जाने कितने रंगों से मिलवाती है।
1: हाँ बहनों, हमारी आंखें केवल हमारे शरीर का अंग नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और यादों का भी अनमोल हिस्सा है। और बहनों, आपने ये भी सुना होगा कि आंखें मन की भाषा भी बोलती हैं।
0: बिल्कुल बोलती है। और किसी माँ के लिए बच्चे की पहली मुस्कान, किसी बहन के लिए भाई का चेहरा, किसी इंसान के लिए जीवन साथी की मुस्कान, ये सारे दृश्य आंखों में ही तो बस जाते हैं ना।
1: हाँ, और सिर्फ रिश्ते ही क्यों, खेतों की हरियाली, बारिश की बूंदे, उगता हुआ सूरज, पेड़ पौधे, खिलते हुए फूल और तितलियों के रंग, जिंदगी के कितने खूबसूरत दृश्य हैं ना ये, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। और इसलिए कहा भी जाता है ना लता, आंखें हैं अनमोल।
0: और इन आंखों की असली कीमत हम तभी समझते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख नहीं सकता,
1: जिसके लिए सूरज की रोशनी, अपने प्रियजनों का चेहरा या अपने घर का आंगन, ये सब कुछ सिर्फ एक कल्पना है। और तब एहसास होता है कि जो रोशनी हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वो किसी के लिए कितना बड़ा सपना हो सकता है।
0: और ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखों के उपयोगी हिस्से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सके, वो अपने आसपास की दुनिया को देख सके, तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा मानवीय उपहार या महादान और क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल लता, नेत्रदान को महादान कहा जाता है बहनों, क्योंकि दान वो है जो किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करे, लेकिन महादान तो वो होता है जो किसी की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दे। और नेत्रदान भी एक ऐसा ही संकल्प है बहनों।
0: हाँ, इसका अर्थ है व्यक्ति के मृत्यु के बाद आंखों के उपयोगी हिस्से को जरूरतमंद व्यक्ति के उपचार के लिए दान करना, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को दृष्टि पाने में मदद मिल सके जो कॉर्निया से जुड़ी समस्या के कारण देख नहीं पा रहा हो।
1: हाँ, और नेत्रदान को लेकर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि डर, भ्रम और जानकारी के अभाव में लोग इस नेक काम से पीछे हट जाते हैं।
0: हाँ रानी, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में 25 अगस्त यानी कि आज से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है बहनों, जिसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में बताना, इससे जुड़े भ्रांतियों को दूर करना और लोगों की सही जो जानकारी हो वो इसके साथ मिल सके, साथ ही नेत्रदान के लिए हम इसको प्रेरित कर सके।
1: क्योंकि नेत्रदान को लेकर सबसे जरूरी बात है बहनों सही जानकारी और परिवार से बातचीत, उनका सहयोग, क्योंकि नेत्रदान को लेकर मन में कई सवाल आते हैं। क्या हर कोई नेत्रदान कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
0: हाँ, और परिवार की इसमें क्या भूमिका होती है, इन सवालों के जवाब हमें सुनी सुनाई बातों से नहीं बल्कि चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञों या अधिकृत नेत्र बैंक से लेनी चाहिए।
1: हाँ बहनों, किसी भी अच्छे काम का फैसला डर और भ्रम से नहीं, सही जानकारी और संवेदना के साथ होना चाहिए। और जब नेत्रदान का संकल्प लें तो अपने परिवार को भी इसकी जानकारी जरूर दें,
0: क्योंकि मृत्यु के बाद इस संकल्प को पूरा करने में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहनों, नेत्रदान का अर्थ केवल आंखें दान करना नहीं, किसी और के जीवन में उम्मीद छोड़ जाना है।
1: हाँ बहनों, हम महिलाएं परिवार की सेहत, खुशियों और अपनों की देखभाल में हमेशा अपनी भूमिका निभाती हैं। हम अपने परिवार को अपना समय देते हैं, प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं और जरूरत पड़ने पर सहारा भी।
0: लेकिन जरा सोचिए बहनों, अगर समाज के प्रति भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, किसी की जिंदगी में उजाला लाने में मदद कर सके, तो इससे खूबसूरत विचार और क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, आंखें तो अनमोल हैं बहनों, लेकिन किसी की जिंदगी में उजाला बन जाना उससे भी अनमोल है। याद रखे बहनों, इंसान के जीवन का अंत हो सकता है लेकिन मानवता वहीं खत्म नहीं होती। उसकी आंखें किसी और की दुनिया में रोशनी ला सकती है।
0: और किसी की जिंदगी में रोशनी लौट आए

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: से इसे लेने की जरूरत होती है और हम अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के खास सेगमेंट वात्सल्य में यही तमाम चीजों को लेकर आते हैं, है ना रानी?
1: बिल्कुल बहनों, वात्सल्य यानी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्यार के साथ सही दिशा, समझ और संस्कार देना। और आज हम बातें करेंगे बच्चों की उनके बचपन की और उन छोटी छोटी बातों की जो उनके आने वाले कल को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: हाँ रानी, बहनों कहते हैं बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और उसके पहली गुरु होते हैं वो है उसके माता पिता। तो बच्चे गीली मीठी की तरह ही होते हैं, जिस तरह उसे प्यार संस्कार और सही दिशा मिलती है उसी तरह उसका व्यक्तित्व आकार लेता है।
1: बिल्कुल सही कहा लता, एक बच्चे के लिए माँ की ममता जितना जरूरी है पिता का मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी होता है। माँ बच्चे को अपने आंचल की छांव देती है तो पिता उसे जीवन की धूप में मजबूती से खड़े होना, रहना और चलना सिखाता है।
0: और इसीलिए बच्चों की अच्छी परवरिश किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि माँ और पिता दोनों की साझी जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ, और अक्सर हमारे समाज में यह मान लिया जाता है कि बच्चे को जन्म देना और पालना पोसना केवल माँ का ही काम है, माँ का ही कर्तव्य है और पिता का काम सिर्फ घर के खर्च उठाना है।
1: बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ एक गाड़ी के एक पहिए के दम पर लंबी दूरी तय कर सकती हैं आप?
0: बिल्कुल नहीं रानी, बिल्कुल नहीं। बहनों ठीक वैसे ही एक नन्ही सी जान का सही विकास भी माता पिता दोनों के बराबर के सहयोग से ही संभव है।
1: हाँ।
0: परवरिश में माता पिता दोनों की साझेदारी जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, माँ का दुलार जहाँ बच्चे को सुरक्षा, करुणा और संवेदना का एहसास कराता है, वहीं पिता का साथ उसमें आत्मविश्वास, अनुशासन और दुनियादारी से निपटने का हौसला भी भरता है।
0: हाँ, जब बच्चे को माँ की ममता और पिता की थपकी भरी जो कंधा होती है वो मिलते हैं ना, तो उनका मानसिक और भावनात्मक विकास बहुत संतुलित होता है।
1: हाँ, और वो भी खासकर आज के दौर में जब घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तब बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता को रसोई में मदद करते, बच्चे के डायपर बदलते या उसकी पढ़ाई में समय देते देखता है तो वो बचपन से ही समानता और एक दूसरे के सम्मान करना सीखता है।
0: हाँ रानी, बहनों जब घर में माता पिता आपस में मिलकर फैसले लेते हैं ना, तो बच्चे की परवरिश में दोनों मिलकर के स्वयं ही एक सहयोगात्मक कार्य हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो घर का माहौल जो है वो तनाव मुक्त रहता है और ऐसे माहौल में बड़े होने वाले बच्चे बहुत तरह के जो तनाव होते हैं ना उससे स्वयं ही दूर हो जाते हैं।
1: हाँ, कभी माँ को मतलब बच्चे को पढ़ाई करा दे तो कभी पिता खुद बैठकर बच्चे का होमवर्क में सहयोग कर दे या उसके साथ गेम खेले। इन छोटी छोटी प्रयास से बच्चों को परवरिश में उन्हें एक खुशनुमा माहौल मिलता है।
0: हाँ, बच्चे से दिन भर की बातें सिर्फ माँ ना पूछे, पिता भी उसकी परेशानियों और खुशियों में दिलचस्पी ले। अगर माँ बच्चे को नहला रही है तो पिता उसकी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। यह कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने ही बच्चे के संग बिताया खूबसूरत समय होगा।
1: हाँ बहनों, परवरिश सिर्फ एक बच्चे को बड़ा करना नहीं है बल्कि एक नन्हे से पौधे को ऐसा वट वृक्ष बनाना है जो कल को पूरे समाज को छांव दे सके, और ये तभी संभव है जब माँ का प्यार और पिता का मार्गदर्शन एक साथ मिले।
0: हाँ रानी, जब पिता तनाव में हो या कोई परेशानी से जूझ रहे हो तो माँ का भी यह कर्तव्य है कि उन्हें हौसला दे। जब आप दोनों मिलकर अपने बच्चों का हाथ थामेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा जिंदगी की हर जंग जीत लेगा।
1: और जब आपका बच्चा आपके पास कोई सवाल लेकर आए तो ये ना कहें कि पापा से बात करो बल्कि मुस्कुरा कर कहिए कि चलो हम दोनों मिलकर इसका हल निकालते हैं।
0: हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान लेकर हम अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत नींव डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल लता, बच्चों का हाथ ना बहनों बहुत छोटा होता है लेकिन उस छोटे से हाथ में माता पिता की पूरी दुनिया समाई होती है। हम आज अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बहुत कुछ जुटाते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छी सुविधाएं, लेकिन बच्चे के मन में सबसे गहरी जगह बनाती है माता पिता की मौजूदगी, उनका समय, उनका प्यार और उनका साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बेलो, घर छोटा हो, जगह की कमी हो, बालकनी में भी ज्यादा जगह ना हो तो क्या करे, और किचन गार्डनिंग का भी शौक हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने घर में हरियाली नहीं ला सकते, पौधे नहीं लगा सकते। क्यों?
4: बिल्कुल लता, घर छोटा हो सकता है, जगह की कमी भी हो सकती है, लेकिन हमारे मन में हरियाली की जो चाह है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। और आज जब शहरों में घरों के आसपास खुली जगह कम होती जा रही है, ऐसे में प्रकृति को अपने घर तक लाने का एक सुंदर तरीका है वर्टिकल गार्डन।
3: हाँ बहनों, वर्टिकल गार्डन यानी पौधों को जमीन पर लगाने के बजाय दीवार, रेलिंग या मजबूत स्टैंड के ऊपर की ओर लगाना, कम जगह में ज्यादा पौधे। ये लगाने से खूबसूरती तो बढ़ती है और आपको जगह भी मिल जाता है, तो ये जो तरीका है वो बेहद खूबसूरत तरीका है
4: और आसान भी। हाँ। अपने घर की बालकनी की एक खाली दीवार, खिड़की के पास की जगह या मजबूत रेलिंग को भी छोटी सी हरी दुनिया में बदला जा सकता है बहनों, यानी पौधे लगाए जा सकते हैं, और इसके लिए करनी होगी थोड़ी सी मेहनत।
3: क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।
4: हाँ, बिल्कुल।
3: इसके लिए गमलों के साथ पुराने डिब्बों के बॉक्स या ऐसे उपयोगी बीजों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिनमें पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं, और वो भी कई तरीके। पता है रानी, मैं तो क्या करती हूँ, मुझे जो भी कुछ खाली डब्बा, बोतलें या मिलता है, मैं सब कुछ में प्लांट की एक डंडी डाल देती हूँ और कुछ ही दिनों में देखती हूँ कि हमारा गार्डन जो है वो हरा भरा हो गया।
4: हाँ बिल्कुल। और आप चाहें तो सजावटी पौधों के साथ साथ पुदीना, धनिया, हरी मिर्च जैसी छोटी छोटी उपयोगी चीजें भी उगा सकती हैं बहनों। हाँ। यानी सुंदरता के साथ घर की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी हो सकती है।
3: हाँ, बस ध्यान रखें कि पौधों को पर्याप्त रोशनी मिले, पानी जमा ना हो, ऐसी जगह का चुनाव करें, और जिस भी दीवार या स्टैंड पर गमले लगाए जा रहे हैं वो उनका भार संभालने के लिए मजबूत हो।
4: हाँ बहनों, पौधे सिर्फ घर की सुंदरता नहीं बढ़ाते, वे तो हमारे मन की भी सुंदरता बढ़ाते हैं। वे हमें प्रकृति से जुड़े रहने का एहसास भी कराते हैं, इसलिए जगह कम हो भी हो तो कोई बात नहीं, हरियाली के लिए जमीन नहीं एक सोच चाहिए।
3: हाँ, और यही सोच हमें दिखाई देती है वर्टिकल गार्डन में। ये उन तमाम चीजों का उदाहरण है जो हम ये बातें कर रहे हैं। अपने गार्डन में ये तमाम चीजों को हम हासिल कर सकते हैं।
4: बिल्कुल।
3: एक छोटी सी दीवार या स्टैंड भी प्रकृति के लिए जगह बन सकती है, इसलिए अपने घर के किसी कोने को यूं ही खाली न छोड़े, वहां पौधे लगाएं और घर में प्रकृति का एक छोटा सा संसार बसाए,
4: और ये बड़े अच्छे लगते हैं, क्यों लता?
3: हाँ,

0: है ना रानी, बड़े अच्छे लगते हैं ना?
1: बिल्कुल।
0: अपनी सखियों के साथ बातें करना, अपने कार्यक्रम में उनसे मिलना और मधुर संगीत सुनना बड़े अच्छे लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समय ने तो अब हमें इशारा किया है कि बहनों से लेना होगा विदा, लेकिन बहनों चलते चलते आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। तो अपनी सखी लता
1: और रानी को दे विदा। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मंजिल फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है योगेश ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। सावन के इस महीने में सावन का ये प्यारा सा गीत।

इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। जी हाँ श्रोता साथियों, सावन के बहकने और महकने के बावजूद कई मन ऐसे होते हैं जो तृप्त नहीं हो पाते, वो सावन में भी एक जलन सी महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म खुशबू का ये नगमा आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है गुलजार और मौसीकी है आर डी बर्मन की।

सावन में तपते मन को रिमझिम बरसती बूंदे काफी सुकून देती हैं। बूंदों की जब लड़ियां धरती पे गिरती है तो मन तृप्त सा हो जाता है। आइए सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में। मुकुल दत्त का ने लिखा है इसे और संगीत से सजाया है आर डी परमन ने।

0: श्रोता सुन रहे हैं इस समय फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए श्रोताओं, हम आपके आपको बाकी नगमे सुनाते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है. आइए हम आपको सुनवाते हैं अब अनामिका फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में. मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है इसे और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने.

जितने भी ग्लेशियर होते हैं, कई बार बारिश की बूंदें उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। आइए सुनते हैं नया जमाना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत एसडी बर्मन का।

आप सुन रहे थे फिल्म नया जमाना का ये गीत, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mr. Sindhya lauded CDOT for its pivotal role in the country's telecom transformation. Mr. Sindhya expressed confidence that with the contribution of CDOT, India can now lead the world in 6G. The centre has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act and issue citizenship certificates to eligible applicants. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. Chief Minister Shubhendu Adhikari told reporters that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. The U.S. Department of Homeland Security, DHS, has proposed a new $1,03,265 fee on top of existing costs for all H-1B CAP subject petitions, including those for advanced degree holders. DHS estimates the fee would generate approximately $8.8 billion annually based on a projected 85,000 H-1B CAP subject petitions. According to the press release issued by DHS, the additional fee would not apply to H-1B petitions that are not subject to the cap. In men's cricket, Sri Lanka and India match was stopped due to a wet outfield on day 3 of the second test in Colombo. Sri Lanka trailing by 373 runs. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे. डिजिटल लेन देन में 13,000 गुणा हुई वृद्धि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर भारतीय के लिए गर्व का पल. झारखंड में मतदाता सूची सत्यापन और सुधार के लिए आज से होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू. एक परिवार के मतदाताओं के नाम एक बूथ में होंगे शामिल. राष्ट्रीय 41वें नेत्रदान पखवाड़े की रिम्स रांची में हुई शुरुआत. नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने और इच्छुक लोगों से संकल्प पत्र भरवाने पर जोर. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक. लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की है संभावना. और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए 13 सितंबर को होगा मतदान. चुनाव पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी. और अब समाचार विस्तार से. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. यह भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है. 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूपीआई सिस्टम का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट्स इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है. झारखंड में मतदाता सूची के सत्यापन और उसमें सुधार के लिए आज से होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई. यह अभियान 4 सितंबर तक राज्यभर में चलाया जाएगा. इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों का सत्यापन कर रहे हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य एक ही परिवार और घर में रहने वाले मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज कराना है. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे. भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के दूसरे दिन छात्रों का जत्था आज हजारीबाग से चतरा के लिए रवाना हुआ. इस दौरान हजारीबाग में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि इस यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और राज्य सरकार से वादा पूरा करने की अपील की.
3: छात्र का भला करिए और इस भर्ती व्यवस्था में सुधार लाइए। झारखंड के युवाओं ने ठान लिया है कि अब सिर्फ आश्वासन देने से अब युवा मानने वाले नहीं। 5 जुलाई से आंदोलन का शुरुआत

0: जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत और यही लोग का संघर्ष के वजह से आज इतना बड़ा बड़ा जांच से पर्दाफाश तमाम छात्रों का एक प्रयास से ही हुआ है।
1: जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
2: झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार कहीं ना कहीं हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर चल रही है। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a)(19)(1)(b) है जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं लगी, पर सरकार ने इस पर एक परमिशन का क्लॉज डाल दिया। दूसरा, इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी करनी शुरू की है और कहीं ना कहीं ये सरकार पूरे तरीके से तानाशाही पर उतर गई है।
1: वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर राज्य सरकार को गिराने के लिए साजिश का आरोप लगाया।
3: भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार, ये तो जहां भी इनकी सरकारें नहीं है जिस राज्य में, वहां अपनी सत्ता लूटने का तो दिन रात प्रयास करते रहते हैं कि वहां की सत्ता कैसे लूट लें, और वो प्रयास आज से नहीं चल रहा है, ये तो 2020 से ही ये प्रयास यहां चल रहा है। लेकिन यहां के लोगों को हक अधिकार छीन के यहां के लोगों को भूखे मारने की साजिश करेंगे, ये सारा दाव इनका उल्टा पड़ेगा।
1: राष्ट्रीय 41वें नेत्रदान पखवाड़े को लेकर रिम्स स्थित आरआईओ और आई बैंक की ओर से जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर नेत्र रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि नेत्रदान से मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। पखवाड़े के तहत आज से 8 सितंबर तक आरईओ परिसर में आई डोनेशन प्लेज तथा अवेयरनेस कैनोपी लगेगी। आरआईओ रिम्स ने बताया कि अभियान का संदेश नेत्रदान करें किसी की दुनिया रोशन करें है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और इच्छुक लोगों से संकल्प पत्र भरवाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के चुनाव के लिए 13 सितंबर को मतदान होगा। इसकी तैयारियों को लेकर रांची के चैंबर भवन में चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें अंचल किंगर को मुख्य चुनाव पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही अन्य व्यवसायियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। रांची समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जनता दरबार में जन समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।
4: जन सुनवाई जनता दरबार का आयोजन किया गया। सुबह से लगातार ग्रामीण और शहरी इलाके से अलग अलग समस्याओं को लेके आए थे हम लोगों ने। जमीन संबंधित मामले हो गए या हमारे जो कुछ सामाजिक समस्याएं भी जो आए हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में और राशन कार्ड के संबंध में, ये सभी चीजों को हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को भी और जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और इसका लगातार समीक्षा भी की जा रही है।
1: गिरिडीह जिले के बनियाडीह सीसीएल की कोलियरी स्थित लंकास्टर अस्पताल परिसर में आज सुबह भू धसान की घटना हुई। हालांकि अस्पताल और कार्यालय बंद रहने से कोई जनहानि नहीं हुई। सीसीएल गिरिडीह के महाप्रबंधक के एस गैवाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
5: हम लोग इम्यूनिटी तुरंत साइट पर आए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं पूरे एरिया को, हम लोग कॉर्डन ऑफ कर दें, कोई आदमी ना आए, जानवर ना आए, और उसके बाद इसको थोड़े दिनों के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये बहुत अचानक मूवमेंट और बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परिवार अरे उसकी जगह को निरीक्षण करेंगे और एकदम जरूरी रहा कि उनको वापस शिफ्ट करके बाहर देखेंगे।
1: चतरा जिले के टंडवा पिपरवार थाना क्षेत्र की सीमा पर आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरोह के एक अपराधी विकास कुमार के पैर में गोली लगी है। एसपी अनिमेश नथानी ने बताया कि उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड में सक्रिय मॉनसून का असर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट
6: आईएमडी रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 27 से 28 और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मैं विश रहमान, आकाशवाणी समाचार रांची।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे। डिजिटल लेन देन में 13,000 गुणा की हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर भारतीय के लिए गर्व का पल। झारखंड में मतदाता सूची सत्यापन और सुधार के लिए आज से होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू। एक परिवार के मतदाताओं के नाम एक बूथ में होंगे शामिल। राष्ट्रीय 41वें नेत्रदान पखवाड़े की रिम्स रांची में हुई शुरुआत। नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने और इच्छुक लोगों से संकल्प पत्र भरवाने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना। और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए 13 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अनुरंजनी में आइए आज सुनते हैं अनिता सेन को। आप प्रस्तुत कर रही हैं पहले अमीर खुसरो की बंदिश और उसके बाद आप प्रस्तुत करेंगी टप्पा। आइए सुनते हैं अनिता सेन को।

अभी आप सुन रहे थे अनीता सेन से ये टप्पा, और इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए आज सुनते हैं सबसे पहले मिताली सिंह की आवाज में ये गजल मलिक गुमनाम की।

इधर देखो उधर देखो, जहां देखो मुझे देखो। अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह की आवाज में मलिक गुमनाम की ये गजल। अब आइए सुनते हैं इब्राहिम अश्क की ये गजल, आवाजें भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की है।

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गाए इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 से दोपहर समाचार, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: to the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।

0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: लाइक टू कंग्रेचुलेट फेडेक्स एंड दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट।
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जय भारती।

कार्यक्रम जय भारती सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम हमारे फौजी भाइयों को समर्पित होता है। हमारे फौजी भाई जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे होते हैं, चौकस रहते हैं, सुरक्षा का हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए ही उन्होंने लगभग अपनी ज़िंदगी को छोड़ रखा है, हमारे लिए ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश को सौंप रखा है। तो हम उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखते हुए कुछ गाने सुनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद आए। हमें पता है कि हमारे फौजी भाई भी काफ़ी धार्मिक हैं, और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना हमारे प्रिय भोलेनाथ को समर्पित होता है। हमारे फौजी भाई जो भक्ति में रमे होते हैं, हम समझते हैं उन्हें ये गीत बेहद पसंद आएगा।

आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का ये गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में। लिखा था इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने ही। अब आइए सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। शब्द है संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे फौजी भाई अनेक जगह पर उनकी पोस्टिंग होती है, कई सुरम्य जगहों पर होती है और इन दिनों तो बरसात का मौसम चल रहा है। एक से एक हसीन दृश्य, प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसे में हमारे फौजी भाइयों का भी ये जिद करता होगा कि थोड़ी देर को तो कहीं ठहर जाएं।

इन हंसी वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले चले, क्योंकि चलना ही तो जीवन है। हमारे फौजी भाइयों, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है और आपसे अच्छा हमें कौन बता सकता है। जीवन में बस चलना ही तो है, चलते चलते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। रास्ते में जो भी रुकावट आए उसे लड़ना है, उससे उस पर विजय पानी है और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ जाना है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म आया सावन झूम के फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के शब्दों को शुरू में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। शेष नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। खान एवं खनिज विकास विनियमन MMDR कानून में संशोधन को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा है। पत्र में वित्त मंत्री ने दावा किया है कि संशोधन से राज्य को 14,000 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा और कोयला कंपनियों से बकाया राशि पर असर पड़ेगा। उन्होंने श्री मरांडी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। MMDR संशोधन विधेयक को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है।
1: कोयला भी अपने यहाँ टैक्स लगने के कारण महंगा हो जाता है, आयरन और भी महंगा हो जाता है, तो सरकार को रॉयल्टी के पैसे में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी अगर इसी तरीके का राज्य सरकार को सेस लगाने का प्रावधान रहा तो। वित्त मंत्री जी ने कन्वीनियंटली इन तथ्यों को अपने पत्र में छिपा दिया है।
0: इधर कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। बोकारो पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इस बिल को झारखंड के हितों पर आघात बताया है।
2: हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा अधिकार हम लूटने नहीं देंगे, और हम समझते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य का सेंटिमेंट है, निश्चित रूप से हम राज्य के लोगों को अधिकार दिलाने में सफल होंगे। इसमें पूरे प्रदेश के लोगों का सहयोग मिल रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर आघात है। उन्होंने जनता से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी या आशंका होने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से बेटियों के सुरक्षित भविष्य की रक्षा करने का संकल्प लेने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दी जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट।
3: UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और

0: अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ धनबाद के बरवा अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी रवि कुमार ने विधायक पर व्हाट्सएप कॉल के दौरान कथित तौर पर गाली गलौज, वर्दी उतरवाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में विधायक सहित 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इस बातचीत का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जामताड़ा में आगामी 27 अगस्त को खेलो इंडिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसका आयोजन जामताड़ा महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय फतेहपुर में किया जाएगा। माई भारत खेलो इंडिया की उपनिदेशक उत्तरा विश्वास ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है।
2: 29th of August our national sports day के कनेक्शन में 27th of August हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी देश का जो स्पोर्ट्स पर्सन है, युवा है, उनको एड्रेस कर रहे हैं। देश के 16 लोकेशन में ये आयोजन किया जा रहा है एंड जामताड़ा में दो जगह पे आयोजन हो जा रहा है।
1: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा, जो प्रायोजित है कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयाँ रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का

0: जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
1: जी,
0: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
1: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल। दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
1: बिल्कुल,
0: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
1: जी।
0: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
1: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
0: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
1: जी
0: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं, और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
0: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
1: जी।
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
0: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती
1: हैं,
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों

0: पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
0: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी का क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह
3: गया, लगता है हो गई है,
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
3: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई पहुंच गए सरितपुर, वाह कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर, भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत,
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा है, काट।
8: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
9: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो, सुन लो मेरी बात, यदि

0: मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
1: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
4: और पैसे कमाने हैं।
1: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
0: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेनी इस गर्मी ने।
1: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे पशु पक्षी को क्या होगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
7: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
7: फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारा सामान
6: उसी में ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
1: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार होना, मानव जनित कारण भी होते हैं। जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
8: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
9: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो, अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का।

0: जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
1: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
2: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
3: थैंक यू सर।
2: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
3: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
2: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
3: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
2: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
3: सर।
2: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
3: थैंक यू सो मच सर।
0: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश के पीटी उषा जो भाग ले रही
5: है।
0: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के सौवें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए

0: उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

कार्यक्रम डांची मेलोडीज में मीता आप सभी का स्वागत करती है। इस प्यारे से कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित जी का जन्मदिन है। तो चलिए आज रांची मेलोडीज में सुनते हैं उनके अभिनीत कुछ फिल्मों के गीत और उनके द्वारा गाए गए भी कुछ फिल्मों के गीत। जैसा कि हमने आपको बताया, विजेता पंडित एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 1981 में आई सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा रहा है। उनके पिता पंडित प्रताप नारायण सिंह एक शास्त्रीय गायक थे और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके सगे चाचा हैं। आइए सुनते हैं उनकी सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी का ये गाना।

1987 में रिलीज हुई एक फिल्म दीवाना तेरे नाम का, जो कि रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में उनके साथ साथी कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती और डैनी डेंजोगपा, जगदीप और सरस सक्सेना। निर्देशक थे इस फिल्म के दीपक बहरी और निर्माता हैं गौतम भाटिया। यह फिल्म दो पक्के दोस्तों की कहानी है, भावनात्मक कहानी है और एक प्रेम कहानी भी है। कहते हैं इस फिल्म की मूल कथा दिलीप कुमार की 1957 में आई फिल्म नया दौर से प्रेरित है।

ಕೇಳಿಕ ಪರೇಶ್ಮಾ

लव स्टोरी फिल्म के बाद विजेता पंडित को फिल्मों के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन व्यक्तिगत कारणों और प्राथमिकताओं के चलते उन्होंने काम सीमित कर दिया। बाद में उन्होंने अभिनय से दूरी बनाकर पार्श्व गायन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कुछ पॉप एल्बम भी तैयार किए और कुछ फिल्मों के गाने भी गाए। फिल्म जो जीता वही सिकंदर का गीत उन्होंने उदित नारायण के साथ गाया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ।

1988 में विजेता पंडित की एक फिल्म आई जो एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर फिल्म थी, जलजला। यह फिल्म 13 मई 1988 को सिनेमाघरों में आई थी, रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन हरीश शाह ने किया था और इसे विनोद शाह ने बनाया था। फिल्म की कहानी पहाड़ों में छिपे एक प्राचीन और वीरान शिव मंदिर के खजाने, सोने चांदी और अनमोल रत्नों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पाने के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग निकलते हैं, लेकिन अंत में एक भयानक भूकंप या जलजला सब कुछ तबाह कर देता है। कहते हैं यह फिल्म 1969 की प्रसिद्ध हॉलीवुड वेस्टर्न फिल्म मैक केनाज गोल्ड से प्रेरित है, या उसका हल्का फुल्का रीमेक भी इसे कहा जाता है।

विजेता पंडित की मुख्य भूमिका वाली फिल्म मोहब्बत सन 1885 में रिलीज हुई। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। 14 जून 1985। इसके निर्देशक थे बापू और इनके साथी कलाकार जो मुख्य भूमिकाओं में थे वो अनिल कपूर, अमरीश पुरी, अमजद खान और शक्ति कपूर भी थे। ये फिल्म विजेता पंडित के लिए फिल्मों में एक शानदार वापसी साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। यह तमिल फिल्म थुरल निन्नु पोच्चू की रिमेक थी। ये कहानी प्रेम कहानी थी और इसका संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने।

विजेता पंडित की कुछ प्रमुख फिल्में थीं लव स्टोरी, मोहब्बत, वफादार, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, कसम धंधे की, प्यार का तूफान और अमर संगी। हालांकि लव स्टोरी जितनी कोई भी फिल्म उनकी बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पार्श्व गायन भी किया और कई फिल्मों के लिए गाने गाए, कई एल्बम के लिए गाए। अरे यारों मेरे प्यारों काफ़ी हिट गीत था उनका। देखने में सीधा साधा, दिल बेकरार है, याद तेरी आती है, मैं क्या करूं भगवान, सनम ओ सनम आदि मधुर गीत भी उन्होंने गाए। आज विजेता पंडित का जन्मदिन है और हम पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और कार्यक्रम रांची मेलोडीज से मीता बोले तो आपकी मीत आपसे अनुमति भी चाहती है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूपीआई की अभूतपूर्व क्षमता और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। अब ये प्रणाली 11 देशों में संचालित हो रही है। यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर हजारीबाग में उत्साह है। जिले में कुल लेन देन में छोटी खरीदारी की हिस्सेदारी 63% और बड़े ट्रांसफर की वैल्यू 71% पहुंच गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोगों ने व्यापार को सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एमएमडीआर संशोधित बिल पर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने केंद्र पर आर्थिक हमले और आदिवासी अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस 27 अगस्त को जिला स्तरीय धरना और 7 सितंबर को राजभवन का घेराव करेगी। खूंटी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने गुम हुए 53 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के जरिए इन फोनों को खोजा गया। खोया मोबाइल वापस पाकर आम लोगों ने खूंटी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में पलामू के उटारी रोड में सर्वाधिक 185 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक राज्य में गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में राज्य में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है खेल पत्रिका का कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर है रेखा पाठक और अमिता खौरी का। प्रस्तुति एवं संयोजन है प्रभु शरण की।
2: क्रीड़ा जगत।
3: क्रीड़ा जगत के आज के इस अंक में दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अमित, आपका भी स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार रेखा, और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: अमित, आज के अंक में क्या है खास, डालते हैं एक नजर।
2: रेखा, आज तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज की, जिसमें कुछ भारतीय युवा खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। पहला टेस्ट हमने जीता है 165 रन से, और दूसरे टेस्ट की भी हम चर्चा करेंगे
3: जी।
2: पर्सनालिटी में उन दो खिलाड़ियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कमाल दिखाया है।
3: बिल्कुल मानव सुधार, जिन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाया है, और देवीदत्त पड्डीकल की बात करेंगे, इन्होंने सेंचुरी भी बनाई है और बहुत सारी उपलब्धियां इनके खाते में है। साथ ही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है हमारे देश में, खास में भी वर्ल्ड बैडमिंटन से खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे सिबलिंग यानी सहोदर भाई बहनों की जोड़ी ने कमाल
2: दिखाए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा इवेंट शुरू हुआ रेखा, उसका नाम है प्रीमियर लीग। इसका 35वां सीजन शुरू हुआ, इस पे भी चर्चा होगी। और खेल खबरों में कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें हैं, जैसे दलीप ट्रॉफी शुरू हुआ है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी का अभी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने दलीप ट्रॉफी से शुरुआत की है।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा
3: अनुभव की, नए करियर की
2: जी। बिल्कुल,
3: तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न पहले टेस्ट मैच की बातें, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ कमाल हुआ है। 15 से 19 अगस्त 2026 को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा कर इस सीरीज में फिलहाल 1-0 की बढ़त बना ली है। और ये भारत का 600वां टेस्ट मैच था, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी था। इस मैच की बात करें दोस्तों, तो पहली पारी में भारत ने 462 रन बनाए थे और ऑल आउट रहा था, उसी में श्रीलंका ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे ऑल आउट होने के बाद। दूसरी पारी में भारत 193 पर ऑल आउट हुआ था, वहीं श्रीलंका 206 रन बनाकर ऑल आउट हुआ था। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम की सफलता है और इस सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे बढ़ा है। दूसरा टेस्ट मैच अभी चल रहा।
2: बिल्कुल सही कहा रेखा। अलग अलग पारियों की हम बात करें तो पहली पारी में आपने बताया कि भारत ने 462 रनों का योगदान दिया। पहले भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की, शुरुआत से ही बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश की गई। और अगर हम प्रमुख भारतीय बल्लेबाजों की चर्चा करें तो सबसे टॉप पे देवदत्त पड्डीकल रहे, जिन्होंने शानदार 167 रनों की पारी खेली। केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 82 रनों का योगदान दिया। ध्रुव जुरेल 51 रन उन्होंने मारे। ऋषभ पंत ने 39 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों की पारी खेली। और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो जैसे रविंद्र जडेजा ने 13 रन, कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे और पूरी टीम 462 रनों पर आउट हुई। पार्टिकल की ऐतिहासिक पारी देखने को मिली। इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण वही रहे और उन्होंने 230 गेंदों पर 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था। और यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक था और उन्होंने सीधे 150 के विशाल स्कोर को पार किया। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई स्पिनरों का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सामना किया। उनकी पारी ने भारत को उस समय मजबूत स्थिति में पहुंचाया जब बारिश के कारण मैच बार बार बाधित हो रहा था।
3: और श्रीलंका की पहली पारी की भी बात करना जरूरी है। भारत के 462 रन के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मेजबान टीम पर दबाव बनाया। श्रीलंकाई बल्लेबाज में सोनल दिनुषा ने 100 रन बनाए, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रनों का योगदान दिया। और दिनुषा के करियर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था और डिकवेला ने भी 80 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को बहुत हद तक सपोर्ट देना चाहा, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंका की पारी को 284 रनों पर ही समेट दिया। भारतीय गेंदबाजी की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि मानव सुथार ने यहाँ 76 रन देकर 4 विकेट निकाले और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने भले ही रन कम बनाए हो, 13 रन बनाए हो, लेकिन 57 रन देकर इन्होंने भी 3 विकेट निकाले और इस तरह से पहली पारी में भारत को 178 रनों की बढ़त मिली थी।
2: और भारत की दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो 178 रनों की बढ़त मिलने के बाद भारत दूसरी पारी में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने इस पारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए। पड्डीकल ने पहली पारी में 167 रन के बाद दूसरी पारी में 44 रन बनाए। और श्रीलंका की ओर से आशिता फर्नांडो ने 31 रन देकर 4 विकेट लिए। प्रभात जयसूर्या ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए। भारत 48.5 ओवर में 193 रन पर आउट हुआ और इससे श्रीलंका को जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला।
3: और 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत फिर से खराब रही। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका 4 विकेट खोकर सिर्फ 84 रन पर ही था और उसे जीत के लिए 288 रन चाहिए थे। कप्तान धनंजय डी सिल्वा, अपनी पहली पारी के शतकवीर सोनल डिसूजा दोनों ही क्रीज पर थे। पांचवें दिन श्रीलंका ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया और इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन मानव सुथार का ही रहा।
2: वो पूरे पहले टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट।
3: जी बिल्कुल, उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लिया और श्रीलंका की बल्लेबाजी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और दोनों पारी को मिलाकर उन्होंने कुल 10 विकेट लिए और श्रीलंका की दूसरी पारी 206 रन पर ही समाप्त हो गई। और भारत ने ये पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ, जो कि गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ, वो 206 रनों से जीत। तो ये उपलब्धियां भारतीय टीम के खाते में रही। और अभी दूसरा टेस्ट चल रहा है दोस्तों, इसलिए दूसरे टेस्ट पर फिलहाल हम कुछ ना बोले तो अच्छा है क्योंकि रिजल्ट आने में भी वक्त है, लेकिन कार्यक्रम में भी बहुत सारी बातें हैं और उस पर बात करना जरूरी है क्योंकि
2: और अभी एक बात और है रेखा कि ये टेस्ट मैच जो था वो कुछ मायने में काफी महत्वपूर्ण था। जैसे कि पहली बात तो यह है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच 600 टेस्ट मैच था। पड्डीकल का उदय हुआ जिन्होंने 167 रन से नंबर 3 पर अपना दावा मजबूत किया। और सुथार की बात करें तो उन्होंने भी धमाकेदार प्रदर्शन किए और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये एक हिस्सा था और इस मैच को जीतने से भारत की रैंकिंग
3: काफी सुधर गई
2: तो और भारत और श्रीलंका के बीच रेखा

0: ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ 77 रन बनाए थे। घरेलू क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता रही है और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम 54 मैचों में 3627 रन हैं, 9 शतक हैं और 19 अर्धशतक हैं। पड्डीकल को 2019 में आरसीबी ने खरीदा था और 2020 में उन्होंने आईपीएल में पदार्पण किया। अपने पहले ही आईपीएल सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 473 रन बनाए और आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता और यह इनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती उपलब्धियों में से एक थी। उनके शुरुआती आईपीएल प्रदर्शन की खास बात यह थी कि उन्होंने अपने पहले 4 मैचों में 3 अर्धशतक लगाए। इससे उनकी आक्रामक लेकिन नियंत्रित बल्लेबाजी की क्षमता सामने आई। 22 अप्रैल 2021 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पड्डीकल ने अपना पहला आईपीएल शतक लगाया। उन्होंने 101 रन नाबाद 101 रन बनाए और आरसीबी ने राजस्थान को 10 विकेट से उस समय हराया था और यह पारी उनके आईपीएल करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारी थी। इसके बाद वे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी खेले। 2022 में राजस्थान ने उन्हें 7.75 करोड़ में खरीदा था। 2025 में आरसीबी की खिताबी टीम का हिस्सा बनने के बाद पड्डीकल ने 2026 में भी टीम के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईपीएल के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार 2025 में उन्होंने 10 मैचों में 247 रन बनाए और 150.61 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 2026 उनका अब तक का सबसे शानदार आईपीएल रहा। इन्होंने 16 मैचों में 464 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 167 से भी ऊपर रहा। भारतीय टीम में पदार्पण की अगर बात करें तो पड्डीकल ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ, अभी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रेखा
1: जी,
0: और 2021 में श्रीलंका के खिलाफ T20 में उन्होंने पदार्पण किया था। बाद में उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिली और उन्होंने मार्च 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में टेस्ट में पदार्पण किया। हालांकि शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्हें नियमित अवसर नहीं मिले, यही वजह है कि 2026 में श्रीलंका दौरे पर मिला मौका उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2026 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पड्डीकल ने करियर को एक नई ऊंचाई दी। पहले टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 167 रनों की शानदार पारी खेली और यह उनका पहला टेस्ट शतक और उस समय उनका टेस्ट करियर का सबसे सर्वोच्च स्कोर था और उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ विशेष रूप से अच्छी पारी खेली और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और यहीं उनका शानदार प्रदर्शन रुका नहीं। 23 अगस्त 2026 को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले दिन पड्डीकल ने फिर शतक लगाया और 117 रन बनाए और यह इनका लगातार दूसरा टेस्ट शतक है। इनकी उपलब्धियों पर अगर हम नजर डालें तो आईपीएल में पदार्पण 2020 में आरसीबी के साथ हुआ। इमर्जिंग प्लेयर चुने गए, पहला आईपीएल शतक 101 रन बनाए थे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, पहला टेस्ट शतक 167 रन बनाए बनाम श्रीलंका के खिलाफ, दूसरा टेस्ट शतक भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही बनाया। आईपीएल 2026 में 464 रन बनाए, आईपीएल करियर में 2270 रन बना चुके हैं जिसमें एक शतक भी है।
1: बिल्कुल, पर्सनालिटी में आपने देवीदत्त पड्डीकल की बात की जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया, तो मानव सुथार गेंदबाजी में हीरो रहे। और मानव सुथार के बारे में दोस्तों हम आपको बता दें कि मानव सुथार राजस्थान के श्री गंगानगर से आने वाले बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और निचले क्रम के बल्लेबाज भी हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 2002 को हुआ था और वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी उनकी बाएं हाथ से ही होती है। इनके शुरुआती जीवन और क्रिकेट की शुरुआत के अगर निदेशक कोई रहे हैं तो इनके पिता जो कि फिजिकल टीचर थे और वो भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे। मानव ने श्री गंगानगर में ही क्रिकेट जीवन की शुरुआत की और राजस्थान की अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 तीनों टीमों तक पहुंचे थे और उन्होंने राजस्थान के लिए 17 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन मानव के करियर का पहला बड़ा मोड़ 2022 22-23 के रणजी ट्रॉफी में रहा। उन्होंने केवल 6 मैचों में उस वक्त 39 विकेट लिए और राजस्थान के उस सत्र के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। उनकी औसत गेंदबाजी 20.33 रही।

0: इसी दौरान उन्होंने बल्ले से भी दो शतक अर्धशतक लगाए और उनकी शुरुआत शुरुआत से ही इतनी प्रभावशाली रही कि वे पहले 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 44 विकेट हासिल कर चुके थे। भारत ए और इमर्जिंग टीम घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का पुरस्कार उन्हें 2023 ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप में मिला और प्रतियोगिता में उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए और संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। उनका औसत 19.50 और इकोनॉमी रेट 4.21 था। इसके बाद भारत ए और अन्य घरेलू प्रतिनिधि टीमों के साथ खेलते हुए उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत की। दलीप ट्रॉफी में यादगार प्रदर्शन 2024 में रहा और मानव ने एक मुकाबले में 49 रन देकर 7 विकेट झटके थे। यह प्रदर्शन उनके प्रथम श्रेणी करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक रहा। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से अपनी पहचान बनाई। उनके IPL करियर की बात करें तो मानव सुधार को गुजरात टाइटंस ने IPL से जोड़ा था। उन्होंने 2024 में अपना IPL पदार्पण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किया। हालांकि IPL में उन्हें घरेलू क्रिकेट की तुलना में सीमित अवसर मिले। उनकी खासियत है बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी, जिसमें वे गेंद की फ्लाइट गति में बदलाव और नियंत्रण के जरिए बल्लेबाजों को परेशानी में डाल देते हैं। भारतीय टेस्ट टीम में प्रवेश उनका हुआ है घरेलू क्रिकेट और भारत ए के प्रदर्शन के बाद 6 जून 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट पदार्पण का उन्हें मौका मिला। ये उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। अपने पदार्पण टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 33 रन देकर 6 विकेट समेत मैच में कुल 7 विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन ने दिखाया कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्पिन गेंदबाजी का प्रभाव डाल सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन अगस्त 2026 में हुआ है और इसमें मानव सुथार ने अपने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मैच में कुल 10 विकेट लिए, पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए और श्रीलंका से भारत ने यह मुकाबला जीता है। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय तक उपयोगी साबित होने वाला खिलाड़ी बताया। उनकी गेंदबाजी की खासियत उनके कंट्रोल वाले बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन में है। वे केवल टर्न पर निर्भर नहीं रहते बल्कि गेंद की फ्लाइट में भी बदलाव करते रहते हैं। गति में परिवर्तन करके बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए मजबूर करते हैं। लगातार एक ही क्षेत्र में गेंद डालने की क्षमता भी रखते हैं। निचले क्रम में बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और इनकी उपलब्धियां अगर हमने तो बताई ही कि राजस्थान से इनका पदार्पण हुआ 2022 में और उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप 2023 में इन्होंने 10 विकेट झटके थे 5 मैचों में। IPL में पदार्पण हुआ था। अगर हम ओवरऑल देखें तो मानव सुथार की कहानी राजस्थान के घरेलू क्रिकेट से लेकर भारतीय टेस्ट टीम तक पहुंचने वाले एक ऐसे युवा स्पिनर की है जिसने लगातार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रदर्शन करके अपनी जगह बनाई है। खासतौर पर 2022-23 रणजी सत्र और 2026 में अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए महत्वपूर्ण स्पिन गेंदबाजों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इन दोनों की ये शानदार उपलब्धियां रही हैं और अब पर्सनालिटी के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इन दिनों भारत में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि खास खास में आज हम आपको सिबलिंग के बारे में बताएंगे कि ये इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सहोदर भाई बहन या भाई की जोड़ी कैसी है, कौन कौन है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। स्कॉटलैंड के 26 वर्षीय जुड़वा भाई क्रिस्टोफर और मैथ्यू ग्रिमली कोर्ट पर बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं। उनका हेयर स्टाइल और किट भी समान होता है जिससे अंपायर तक धोखा खा जा रहे हैं। बचपन में फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले इन दोनों भाइयों ने बैडमिंटन को चुना और इनके माता पिता भी बैडमिंटन के ही खिलाड़ी थे।
1: फ्रांस के क्रिस्टो पोपो और उनके भाई टीमा जूनियर पोपो सिंगल्स में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन डबल्स के साथ खेलते हैं। क्रिस्टो का मानना है कि पुरुष सिंगल्स के अत्यधिक मानसिक दबाव से बचने और खेल का आनंद लेने के लिए भाई के साथ डबल्स खेलना सबसे अच्छा तरीका है। ये रेखा जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ
0: जी,
1: उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये दो भाई हैं चेक रिपब्लिक के, जिनमें ऑन्ड्रेज क्रॉल और जीरी क्रॉल, इन दोनों ने अपनी जोड़ी बनाई। ऑन्ड्रेज का कहना है कि हम भाइयों के रूप में बहुत ओपन हैं, इसलिए कभी कभी हम बाउंड्री भी पार कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ज्यादा खरी खोटी सुना देते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन तकरार के बावजूद हम दोनों बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं।
1: ब्राजील की सामिया लिमा और जैकलिन लिमा महिला डबल्स खिलाड़ी हैं। जूनियर पैन अमेरिकन गोल्ड और 2019 पैन अमेरिकन गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाली

0: जैकलिन को मां बनने के बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन में रुकावट आई, लेकिन परिवार और कोच के सपोर्ट से उन्होंने शानदार वापसी की।
1: और दो बहनों की बात हम अपने अपने दोस्तों को बता दें, और ये तीन ओलंपिक खेल चुकी हैं। स्टोएवा सिस्टर हैं, इनके पिता फुटबॉलर रह चुके हैं। बुल्गारिया की हास्कोवो शहर की स्टेफनी और गैब्रिएला स्टोएवा ने 2016, 2020 और 2024 ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। 5 बार यूरोपीय चैंपियनशिप और 2 बार यूरोपियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली इन बहनों के पिता पेशेवर फुटबॉलर रह चुके हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये शानदार मुकाबला देखने को मिला, फैंस ने भी इनके खेलों का लुत्फ उठाया।
0: बिल्कुल, और खास खास में एक और चर्चा करने जा रहे हैं रेखा। इंग्लैंड में सबसे बड़ी फुटबॉल लीग शुरू हुई है। 22 साल के बाद खिताब बचाने उतरा है आर्सेनल। खेल की रफ्तार तेज रखने के लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, और भारत में भी इसका काफी क्रेज है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग ईपीएल यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग का 35वां सीजन शुरू हुआ है, और इस बार सबकी नजरें डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल पर टिकी है, जो 22 साल के लंबे इंतजार के बाद खिताब को बचाने के लिए उतरा है। प्रीमियर लीग में पिछले 3 सत्रों में 3 अलग अलग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल मिले हैं, जिससे एक बार जंग और ज्यादा रोमांचक हो गई है। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और हर टीम डबल राउंड रॉबिन में 38 मैच खेलेगी। टेबल में शीर्ष पर रही टीम चैंपियन घोषित होगी। टूर्नामेंट अगले साल 30 मई तक चलेगा।
1: रोमांच का गवाह रहा था पिछला सीजन। पिछले सीजन में 90वें मिनट या इंजुरी टाइम में रिकॉर्ड 115 गोल हुए, जो कुल गोल का 11% था। इसके अलावा 142 मुकाबले केवल एक गोल के मामूली अंतर से तय हुए। पिछले सीजन में औसतन 41,753 दर्शक प्रति मैच पहुंचे, जो 98.7% स्टेडियम क्षमता के बराबर है, यानी लगभग स्टेडियम भरा हुआ था। और खेल की रफ्तार तेज रखने के लिए इस सीजन में कई नियम बदले गए हैं। फिजियो से मैदान पर इलाज कराने वाले खिलाड़ी को 30 सेकंड के बजाय 1 मिनट मैदान से बाहर रहना होगा। गोलकीपर के चोटिल होने पर खेल रुकने की स्थिति में एक खिलाड़ी को 1 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। मैदान से बाहर जाने वाले खिलाड़ी को 10 सेकंड में बाहर निकलना हो। इस प्रीमियर लीग में 67 देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। दुनिया के टॉप 100 फुटबॉलरों में से 46% इस लीग का हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा 14% खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं। करीब 9 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पे लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। दोस्तों, खास खास में प्रीमियर लीग की बातों के बाद अब वक्त हो चला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय खेल खबरों का। तो सबसे पहले क्रिकेट की बातें। भारत के 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन का शानदार आगाज 63वीं दिलीप ट्रॉफी के साथ हो गया। ये टूर्नामेंट न केवल देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिताओं में से एक है, बल्कि इस बार टेस्ट क्रिकेट में भारत की बेंच स्ट्रेंथ को परखने के लिहाज से भी बेहद अहम है। हाल के दिनों में चोटों और खराब फॉर्म के कारण टीम इंडिया को नए विकल्पों की तलाश है। न्यूजीलैंड दौरे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को देखते हुए यह सीजन कई खिलाड़ियों के लिए टीम का दरवाजा खटखटाने का सुनहरा मौका भी है। टूर्नामेंट पारंपरिक 6 टीम जोनल फॉर्मेट में खेली जा रही है, जिसमें 15 वर्षीय युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे हैं।
0: 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में 30 से लेकर 40 पदक जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता रोजन सोढ़ी ने हाल ही में कहा था कि भारत के पास 2036 के खेलों के लिए संभावित पदक विजेताओं की पहचान करने के लिए बहुत कम समय है, और उसे बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और प्रतिभाओं की खोज में मौजूद कर्मियों को तत्काल लगाने की जरूरत है।
1: वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को नीदरलैंड के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड 6 अंक हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत के अंतिम 4 में पहुंचने की राह काफी कठिन है।
0: आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 महीने से शीर्ष स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 3 स्थानों का नुकसान हुआ। अब वे 4थे स्थान पर खिसक गए हैं। पिछले 1 साल से नंबर 2 पर चल रहे इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी ब्रूक टॉप पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 2 स्थानों की बढ़त के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह 21 महीने से टेस्ट में टॉप पर कायम है। कीवी गेंदबाज मैट हेनरी 2रे स्थान पर हैं। ऑलराउंडर्स की सूची में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजाई पहले स्थान पर हैं। अक्षर पटेल टॉप 10 ऑलराउंडर्स में भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं।
1: वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मिक्स डबल्स फाइनल में थॉम गिक्वेल और डेल्फिन डेलरू की जोड़ी और पुरुष सिंगल्स में फ्रांस के एलेक्स लैनियर ने खिताब जीते। फ्रांस के खेल इतिहास में पहली बार उसके खिलाड़ी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। महिला सिंगल्स में कोरिया की आन से यंग दूसरी बार चैंपियन बनी। इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय शटलर ट्रेसा जॉली गायत्री गोपीचंद का सफर सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। हालांकि इस हार के बावजूद इस जोड़ी ने टूर्नामेंट में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत को घरेलू बैडमिंटन चैंपियनशिप में यही एकमात्र मेडल मिला। ट्रेसा और गायत्री को दुनिया की नंबर एक चीन की लियू शेंग शू और तान लिंग की जोड़ी से 21-18, 13-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। 1 घंटे 11 मिनट तक चले इस रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीतकर शानदार शुरुआत की, लेकिन चीनी जोड़ी ने बाद में जोरदार वापसी की। 2011 के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत का ये पहला मेडल है। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज जीता था।
0: ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के खेल मंत्रियों ने रविवार को विशाखापट्टनम में भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पोर्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अपनाया, जिसमें सदस्य देशों ने संवाद, आपसी सम्मान और समावेशिता के जरिए खेलों में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया ने ब्रिक्स देशों के बीच खेल साझेदारी विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी केवल घोषणाओं तक सीमित रहनी चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतियोगिताओं तथा खेल विज्ञान से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए ठोस मंच तैयार किए जाने चाहिए। मंडविया ने कहा कि हमें ऐसी ब्रिक्स खेल साझेदारी बनानी चाहिए जो घोषणाओं से आगे बढ़कर खेल सहयोग के लिए ठोस मंच तैयार करे।
1: दोस्तों, ये तो थे खेल समाचार और इसी के साथ आज का ये अंक यहीं तक। इस कार्यक्रम के संयोजक है प्रभु शरण। इसी के साथ अपनी दोस्त रेखा
0: और अमित को विदा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम, 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे 5:02 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक, 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 6:02 पर। चर्चा का विषय होगा किसान भाई बहनों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं, प्रस्तुति प्रभु सरन की होगी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7:00 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल।

आदिवासी अखाड़ा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर, 7:45 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता। सब्जेक्ट है गिव साइट टू समवन, बस्टिंग द मैथ।

है डॉक्टर रश्मि रंजन। आठ बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक दिल्ली केंद्र से। 9:45 पर आप सुनेंगे मंथन दिल्ली केंद्र से। गूंजे झारखंड ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सांझ सरगम, थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम में आइए सुनते हैं पहला फिल्म गीत, फिल्म लगान से। गीत जावेद अख्तर के हैं, संगीत A.R. रहमान के, आवाज अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और सान के।

सुनते हैं अगला गीत फिल्म मैंने।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म यादों की बारात से मजरूह सुल्तानपुरी के गीत है, RD वर्मन के संगीत, और इस गीत को गाए हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आई सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सीता और गीता से। आर डी वर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के गीत, आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म दीवार से। गीत साहिर के हैं, संगीत आरडी वर्मन के और आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की।
3: दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बधाई दी है। अन्नपूर्णा देवी ने इसे वैश्विक मंच पर भारत को स्थापित करने वाली डिजिटल क्रांति की मिसाल बताया। वहीं संजय सेठ ने कहा कि बिना किसी मदद के आम लोगों द्वारा डिजिटल पेमेंट करना तकनीक की असली ताकत और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा नेताओं ने रांची सदर सीओ से मुलाकात कर प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। संशोधित एमएमडीआर बिल के खिलाफ खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने कांग्रेस के चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस 27 अगस्त को जिला स्तरीय धरना, 7 सितंबर को राजभवन घेराव और 9 से 16 सितंबर तक प्रखंडों में प्रदर्शन करेगी। पलामू पुलिस ने

0: नियंत्रित हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन सफाया के तहत इनाम की घोषणा की है। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ऑटोमेटिक हथियार की सूचना पर 20,000, पिस्टल पर 15,000 और देसी कट्टे पर 5,000 रूपये का इनाम मिलेगा। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी। पूर्वी सिंहभूम में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि गुड़ाबांदा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 17 चोरी की मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। सरायकेला खरसावां में अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उपायुक्त के निर्देश पर खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति के नेतृत्व में चौका, चांडिल और कंदरबेड़ा में छापेमारी की गई। इस अवैध कारोबार के खिलाफ चांडिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। शाम की सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस सभा में सबसे पहले हम सुनते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। महिला समानता दिवस पे चर्चा होगी इस कार्यक्रम में, साथ ही कुछ लोकगीत सुनेंगे, मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम के 6:30 पर सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग, क्षमा करें संध्या 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम संथाली। 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे शाम के 7 बजे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर सुनेंगे

संध्या 7:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दलहनी तेलहनी फसलों की खेती पर चर्चा होगी, साथ ही इस कार्यक्रम में लोकगीतों का आनंद लेंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल हम प्रसारित करेंगे रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:00 और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी की चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका अनुराधा पौडवाल को। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नगीना का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। आप सुन रहे हैं श्रोता, आज एक ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। तब सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरों के बोल हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं पत्थर के सनम का ये शीर्षक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू के बोलते हैं। और आज आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर के स्वर है, फिल्म का नाम है दाग और गीत रचना साहिर के हैं।

प्रेम रोग इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर लता मंगेशकर के स्वर में। गीत रचना संतोष आनंद की थी। आप सुन रहे थे श्रोताओं एक ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कार्यक्रम गुलदस्ता में। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम के साथ हम होंगे आपके साथ।

नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में पुनः एक बार आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देशभक्ति गीत से आप सभी को एक सुंदर सा गीत सुनवा रहे हैं, कुमार सानू, उदित नारायण और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने।